0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

यू नो व्हाट, अक्सर ये जो शब्द है ना मूव ऑन, ये किस लिए यूज कर लिया जाता है? रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत तकरार में. लेकिन लाइफ में, वो चाहे करियर हो जिसमें पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या दुनिया भर की सोशल लाइफ हो, इन सब में जब हल्की सी ठोकर लगती है ना तो मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड कॉम्बिनेशन है जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है तो बड़ा बुरा लगता है, राइट? लेकिन जब बात आ जाती है स्पॉटलाइट की, जब बात आ जाती है बॉलीवुड हॉलीवुड फेम की, तो ये चीजें उतनी मुश्किल नहीं है. ना ना ना ना, आप बस इसे कंफ्यूज कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन से, राइट? आपको पता होगा एपी ढिल्लो के कॉन्सर्ट के दौरान जिस तरह से तारा सुतारिया उनके संग स्टेज पे एक क्लोज रिलेशन मेंटेन कर रही थी, तो वीर पहाड़िया के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ गया, मतलब ब्रेकअप ही हो गया. लेकिन आपको क्या लग रहा था कि मूव ऑन होकर ये कहां पहुंचेंगी, घूमने? ना बाबा ना, तारा सुतारिया जो है वो सुनने में आ रहा है कि आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं. हाँ जी, आदित्य रॉय कपूर, जिन्होंने हाल ही में अनन्या पांडे से ब्रेकअप कर लिया है. अरे भाई भाई भाई, मुझे लग रहा है कि आदित्य रॉय कपूर ने जब से श्रद्धा कपूर के साथ ब्रेकअप किया है, अब तो काफी साल वाल निकल गए इस बात को लेकर, राइट? तो तब से वो कहीं स्टेबल रह नहीं पाए हैं, राइट? आज इन पर बस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट, बाय.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: What, Chumka?
1: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
2: वेंसडे को मूड डाउन हो गया? कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: You know what? अक्सर आप ना एक कैटेगरी अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है माँ का प्यार, माँ का लाड। आय हाय आय हाय, उनके हाथ से बना हुआ खाना हर रोज एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये भूल गए कि आने वाला है मदर्स डे और उस दिन आपको ना उनके हाथों को सुकून पहुंचाना है, आपको उनके लिए स्पेशल वक्त निकालना है यार। और अगर आप बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे हैं स्केड्यूल वाइज, तो मेरे पास टाइम है ना, डेफिनेटली मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि वैसे तो आप अपनी मदर को अक्रॉस द आइलैंड लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, लेकिन ये ड्राइव निकलते निकलते निकलते निकलते लंच टाइम पे पहुंच जानी चाहिए शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, जहां पे 10th of May को मदर्स डे स्पेशल सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इस दिन स्पेशल मेन्यू रहने वाला है जो स्पेशली मॉम्स के लिए क्यूरेट किया गया है। हां जी, इसकी थीम है मैजेस्टिक मदर्स डे बूफे, राइट। इसमें आप आलू टिक्की चाट से लेके पाव भाजी, खीमा पाव से लेके तंदूरी वेराइटी से लेकर माँ की दाल से लेकर कुल्फी पॉप से लेके जलेबियों से लेकर क्या कुछ आप इंजॉय नहीं करेंगे। सो संडे यानी कि 10th of May लंच रहेगा 12 PM to 3 PM। प्राइसिंग है $62++ पर एडल्ट और $42 पर चाइल्ड जिनकी 7 to 12 years की है, एंड अंडर 7 वाले बच्चों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। सो बिना देरी के अब भी अपनी जो सीट है ना वो ब्लॉक कर लो शाही महारानी रैफल सिटी शॉपिंग सेंटर 0321B सिंगापुर। तो मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको उसका जवाब देना है और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर्स देने वाली हूँ शाही महारानी के डाइनिंग के, राइट। तो सवाल बहुत ही छोटा सा है एंड दैट इज शाही महारानी रेस्टोरेंट, जो कि आप कह सकते हैं सिंगापुर का वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट है, इसका एड्रेस क्या है? क्विकली आप मुझे मैसेज कीजिए 9151896 पे टेक्स्ट करके या व्हाट्सएप करके। इवन एक और बोनस है, जो मॉम्स वहां पे आने वाली है ना उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है, लेकिन छोटी सी कंडीशन है कि पर टेबल मैक्सिमम 2 मॉम्स को ही एक गिफ्ट मिलेगा। क्विकली shahimaharani.com पर जाकर अपनी सीट्स ब्लॉक करवा दे, राइट। बाद में देरी हो जाती है यार। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, We're opening a safe space. Dear Masti, Dil Se, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके anonymous letters, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। Because sometimes, रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। So write to us, Dear Masti, दिल से।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये जो हो रहा है ये क्या सच में अच्छे के लिए हो रहा है? देखो डेफिनेटली यार, आप और मैं ना बॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर होके अपनी लाइफ में कुछ कुछ कुछ कुछ प्लस, कुछ कुछ कुछ कुछ माइनस कर चुके हैं। लेकिन जब मूवीज ना गलत मैसेज के साथ आती है, इंटेंशनली आपके अंदर थोड़ा सा खोट लाने के लिए लाती है ना, तब हमें लगता है कि नहीं यार, सिनेमा को हम सिनेमा की तरह नहीं ले सकते, बिकॉज हम तो इसे रियलिटी मानते हैं। सो मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली आयुष्मान खुराना, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान एंड वाकिमा गावी स्टारर पति पत्नी और वो का जो ट्रेलर है ना वो लॉन्च किया गया। एंड डेफिनेटली इसे लॉन्च करने के साथ ये माहौल बनाया गया कि प्लीज आप इस मूवी के ट्रेलर को देखकर ये ना समझे कि कोई इनमें से कैरेक्टर बेवफा है अपने पार्टनर के साथ। इस थॉट को किनारे रखकर सिनेमा को सिनेमा समझकर ही आप देखें। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि क्या आप ऐसी चीजों को अब मजाक में ले पाते? बिकॉज एक टाइम था जब गोविंदा आए थे बीवी नंबर वन को लेकर, है ना, तब मूवीज में ना जो चार्म होता था, तब हम इन चीजों को जितना हल्के में लेते थे वो ले भी पाते थे। लेकिन अभी प्रैक्टिकली ये चीजें इतनी सच हो चुकी है कि हम इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इन दी मूवीज, राइट? मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा on Radio Masti 24/7 Live.
2: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf Masti Hangout.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। देखो एक टाइम आता है जब आपको कंपेयर किया जाता है और आपको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि एक कंपैरिजन मोड पता है कब ऑन होता है? जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं, आप करियर में कुछ करने वाले हैं, तो आपको कंपेयर किया जाता है अपने भाई से, अपने डैड से, मतलब अपने नियर बाय जितने भी सिबलिंग्स है ना उनसे। लेकिन ये चीजें कैसे अच्छी लगने लगती है? जब आप उनसे ज्यादा अचीव कर लेते हो या फिर उनके एट पार अचीव कर लेते हो। लेकिन एक्टर आर माधवन जो है ना, उनके बेटे को जरा भी तारीफ पसंद नहीं है। बेटा तो छोड़ो, पिताजी को ही तारीफ पसंद नहीं है अपने बेटे की। बिकॉज देखो, अगर हम उनकी बात करें तो वो नेशनल लेवल पर स्विमर है एंड नेशनल लेवल पर एथलीट है, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है उनका बेटा, आर माधवन का बेटा वेदांत। लेकिन लोग उसे नेपोटिज्म का शिकार बनाकर बहुत सारे स्टार किड्स से कंपेयर कर देते हैं, कुछ नहीं तो पॉजिटिवली मीम बना देते हैं कि एक तरफ इनके बच्चे को देखो, एक तरफ इनके बच्चे को देखो जो देश के लिए खेल रहा है। इवन ऐसा कंपैरिजन भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पता ही होता है, अपना अपना स्टाइल होता है यार। अब सिंगापुर की तरह प्राइवेसी हर तरफ तो नहीं मिल सकती। आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

प्रियंका चोपड़ा ने अभी पिछले एक आध दिन की बात है रेड कलर की एक एक्सपेंसिव कार के अंदर से बैठकर वीडियो डाली। हाय हाय हाय हाय हाय मजा ही आ गया वो देखकर। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी ये वाले मजे करने बाकी हैं लाइफ में। सो हेलो हाय मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग चोपड़ा आपके साथ। डेफिनेटली प्रियंका चोपड़ा अपने आप में काफ़ी मेहनती स्टार रही हैं जिन्होंने खुद बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, खुद से अपनी मूवीज़ के पीछे काम किया एंड खुद से बहुत सारी कंट्रोवर्सी झेली, लोगों की दुश्मनी झेली और खुद से हॉलीवुड में जाकर काम ढूंढा। तो अब जाकर वो एक इंटरनेशनल एक्टर बन चुके हैं। सो प्रियंका चोपड़ा बात बात पर अपना स्ट्रगल जो है ना वो बताना भूलती नहीं है, बिकॉज एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। उन्होंने बोला एक टाइम था जब बॉलीवुड में उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था और उन्हें पता था कोई काम नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने किसी से हेल्प भी नहीं मांगी। सो दैट्स द बिग पॉइंट है ना। मतलब आप या तो टूट के बिखर जाओ या फिर अपने बिखरे हुए टुकड़ों को लेकर और ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: आप क्या करीना कपूर को हल्के में ले रहे हैं? ना ना ना ना ना ना, वो शुरुआत से ही ऐसी रही है कि सुनो, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो मैं खड़ी हूँ, ये लाइमलाइट मेरे ऊपर से हटनी नहीं चाहिए। सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। आपको पता है, शुरुआत में करीना कपूर की जो एक्टिंग है ना, वो सबको पसंद में नहीं आ रही थी, वो बहुत ओवर एक्टिंग करती थी। उनको ठीक किसने किया? करिश्मा कपूर ने, राइट। वो सेट्स पर रहती थी और उन्हें बाय द टाइम करेक्ट करती जाती थी। हाँ जी, तो सिबलिंग्स का काम ये भी होता है, सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं होता है। एनीवेज, रिसेंटली पटौदी पैलेस, यानी अपनी जो सैफ अली खान का पैलेस है, जो अब करीना का भी पैलेस है, उसमें पार्टी शार्टी हुई है। एंड वो पार्टीज की पिक्चर्स इतने ग्रैंड लेवल पर इधर से उधर वायरल हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वो जो ग्रेस होता है ना, वो हमें करीना के साथ दिखा

0: दिखाई देता है जो कि होना भी चाहिए। आज ये नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: भाई देखते ही देखते इनकी शादी को 4 साल निकल गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे आपको पता चला क्या? हाँ, आप तो अपनी शादी के दिन भी नहीं गिन पाए, दूसरे की तो क्या ही गिनेंगे। सो हेलो, हाई, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और मैं किसी और की नहीं, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर की बात कर रही हूँ। इनकी शादी को 4 साल निकल चुके हैं। 14th of April 2022 में इनकी शादी हुई थी, ऐसा लग रहा है नहीं, कल ही की बात लग रही है। कल ही की बात ये भी लग रही है कि इन्होंने अपनी बेटी राहा को भी दुनिया से इंट्रोड्यूस किया था, राइट? एनीवेज, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि सुन ने में आ रहा है कि आलिया भट्ट सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होल्ड कर रही है। मतलब अभी सिर्फ सुनने में आया है, क्योंकि देखो हम तब तक यकीन नहीं कर सकते हैं, तब तक इस बात को नहीं मान सकते हैं कि आप चाचा और मैं बुआ बनने वाली हूँ, जब तक आलिया भट्ट ये टीजर सोशल मीडिया पे ना डाल दे, राइट? तो डेफिनेटली लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: नाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: जब ना बहुत अच्छा अच्छा पिक्चराइजेशन सोशल मीडिया पे किया जाता है ना कि ये फैमिली बहुत अच्छी है, ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, समथिंग लाइक दैट। जैसे ही इस मोड पर चीजें ऑन होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा तो फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना ना ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है यार। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। क्या आपको लगता है आमिर खान का जो बेटा है जुनैद खान, वो आमिर खान से ही बहुत सारी एडवाइसेस लेता होगा? हो सकता है कि करियर एडवाइसेस लेते हों, बिकॉज बॉलीवुड में एट द एंड उन्हें लॉन्च होना है। लेकिन आई डोंट थिंक कि यार इन रियलिटी ये चीजें उतनी ही प्यारी निकल कर आती होंगी जितनी हमें दिखाई जाती है। हाँ, एनीवेज मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि आज तक आमिर खान के बेटे जुनैद ने जो जो काम किया है उसकी स्क्रिप्ट की प्रूफ रीडिंग या अप्रूवल्स आमिर खान से नहीं लिए गए हैं, ना उन्होंने डिस्कस किया है। पूछे क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लेवल पर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ना कि अपने डैड के कहे अनुसार। ऐसा आमिर खान का कहना है, बट रियलिटी वी डोंट नो। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर ऑन दिस नोट साइनिंग ऑफ। अब मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस।
1: अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार।
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh mein
4: raho. आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Monday Blues, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the Morning Show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
5: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: भाई जब बात 90s की हो ना तो छोटी बात तो मुझसे होती ही नहीं है, लाइक सीरियसली वाली। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, वेलकम वेलकम। जी हाँ, उस दिन का सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार, जिसको कहते हैं थर्सडे। क्योंकि क्या है ना कि अब थर्सडे को होने लगे हैं वो 3 घंटे जो हमारे फेवरेट वाले होते हैं, जिसका ग्लिम्स आपको बाकी शोज में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। एक 90s वाला गाना आप सुनते हैं, उसके बाद लगता है कि यार एक और चलाओ तो, एक और चलाओ तो, लेकिन ज्यादा हम चला नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने ये बहुत ही स्पेशल शो जो है बिल्कुल 3 घंटे 90s के डेकेड को डेडिकेटेड। ये है मस्ती 90s मिक्सटेप, एंड ऑफ कोर्स ये आवाज जो आ रही है ये है आपकी 90s वाली अंतरा की, जो ये एंश्योर करती है कि बस अब हम 90s ही जिएंगे, 90s ही पिएंगे, 90s की ही बात और सांसें भी 90s वाली लेंगे। क्योंकि ऐसा लगता है ना इस शो को करते हुए कि एक्चुअली में किसी ने वॉकमैन में या टेप रिकॉर्डर में रिवाइंड का बटन दबा दिया हो और हम करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं 90s के उस दौर पे। एक एक सिचुएशन में मैं जाती हूँ, एक एक मोमेंट्स में हम लोग 90s के टाइम में जाते हैं और वहां पे ऐसा लगता है कि यार सच में मेमोरीज जस्ट केम अलाइव, राइट। 90s के घर याद है। आज के उसमें देखो तो कितने गैजेट्स, स्मार्ट गैजेट्स, ये गैजेट्स, इतने फर्नीचर, इतनी स्टोरेज स्पेस, इतनी फैंसी चीजें, पर फिर भी जो है चीजें कम थी 90s में डेफिनेटली, पर उनके साथ इतनी मेमोरीज अटैच, एंड एक्चुअली चीजें कम भी नहीं थी 90s में तो। आई थिंक मुझे लगता है चीजें बटोरने का और बटोर के उसको संजो के रखने का जो एक चलता था वो आज तक चलता हुआ आया है, एंड आई डोंट थिंक सो इट इज गोना गो एनीवेयर। कि आज से इतने साल बाद भी व्हेन आई सी माय पैनासोनिक या उसका वॉकमैन, आई एम लाइक ओ माय गॉड, वैसे रखा क्यों हुआ है, ये सवाल ज्यादा आता है। बट देन खुशी भी उतनी ज्यादा देख के उसको होती है कि यार एक टाइम था कि वो वॉकमैन वाज एक इट वाज नॉट लाइक नॉन डिटैचेबल पार्ट ऑफ मी। कान में जो है वो वायर वाला ईयरफोन्स हेडफोन्स टाइप के होते थे और वॉकमैन होता था, एंड पूरा टाइम इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। आज जब मैं इतने एडवांस टाइप का जो है हेडफोन्स वगैरह पहन के घूमती हूँ, इट समटाइम्स रिमाइंड्स मी ऑफ दोज टाइम्स, बट देन मुश्किल था वो वक्त, काफ़ी चीज संजो के चीज़ें ले के रखनी पड़ती थी। आजकल कितना सब कॉम्पैक्ट हो गया है ना, कैसेट याद है कितना, हर चीज़ में हर जगह पे कैसेट कैरी करने होते थे। देखिए मैं एक बार शुरू हो जाती हूँ ना यहाँ पे तो मुझे रोकना मुश्किल हो जाता है। एक काम करते हैं, बीच बीच में 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक एज यूजुअल लेते रहते हैं, एंड वापस आकर बात करते हैं उन्हीं 90s के खूबसूरत दिनों की ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

कड़ा बाबा, यहाँ की लौनी वावा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा,
1: हमारा
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: हाँ जी, हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे कैसेट्स के पास। ऑफ कोर्स मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हैं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। अंतरा आपके यहाँ पे साथ है और अंतरा बात कर रही है कि कैसे 90s का वो टाइम था, क्योंकि हम कैसेट्स की बात कर रहे हैं। तो वॉकमैन में तो हम लोग को जैसे कहीं ट्रैवल करना है, ट्रेन में जाना है या फिर इनफैक्ट गाड़ी में भी जाना है, सो वेर एवर वी आर गोइंग, ओके, अब हमें एक बड़ी जिम्मेदारी ये करनी है कि कैसेट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। एंड वी हैड टू कैरी लाइक, एक तो चूज करना मुश्किल हो जाता है, राइट? या तो आपके पास इतने सारे मिक्स टेप्स हो बना के आपने रखे हो कि अलग अलग फ्लेवर और तरह के गाने जो हैं आपने कुछ अपना लोड कम कर लिया हो, लेकिन ऐसा यूजुअली उतना होता नहीं था, ठीक है? तो पूरा एल्बम हम लोग खरीदते थे और पूरे एल्बम के सारे गाने हमें सुनने नहीं होते थे, इसीलिए वो रिमाइंड फॉरवर्ड कर करके जो है वॉकमैन की जो है ना हालत थोड़ी सी पस्त हो ही जाती थी। बट दोज वर द डेज। आपको पता है कि कैसे पता लगता था कि हम एग्जैक्टली उस जगह पहुंच गए या गाना खत्म हो चुका है? तो अगर आपने कभी ये ट्राई किया हो या नहीं किया हो, आई डोंट नो। सो वॉकमैन का एक रूल था, इनफैक्ट टेप रिकॉर्डर का भी ऐसा होता था कि अगर आप प्ले और रिवाइंड दोनों साथ में प्रेस करते हो तो वो एक साथ ही ऐसे फास्ट में, या प्ले और फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो साथ में प्रेस करते हो करते हुए आगे बढ़ जाता है। एंड वेर एवर लाइक हमें अपने आप में वो स्किल सेट डेवलप करना पड़ा कि ये यहाँ पे होगा, ये बस खत्म होने वाला है, या फिर जैसे ही गाना खत्म होता है दूसरा गाना शुरू होने से पहले देयर इज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, राइट? इफ आई हैव रीच्ड देयर व्हिच मींस द नेक्स्ट गाना इज अबाउट टू स्टार्ट, माय डियर फ्रेंड। एंड साथ में रहता था रेफरेंस मैनुअल हमारा, क्योंकि कैसेट के अंदर आधी से ज्यादा चीजें तो उसी में पता चल जाती थी। देखिए, एक तो उसके डिजाइनिंग भी इतनी खूबसूरती से किया जाता था कि आपने जो है हीरो हीरोइन का जो है वो फ्रंट पेज पे जो कैसेट के बाहर की तरफ से दिखता है, लेकिन दैट इज नॉट ऑल, इट इज लाइक अ बुक इनसाइड, क्योंकि ए साइड और बी साइड में कौन कौन से गाने हैं, गाने के टाइटल का नाम, उसके नीचे जो है सिंगल्स का नाम, ये होता था। बट अगेन, दिस इज नॉट द एंड, देयर वर इन फैक्ट कैसेट्स जहां पे अंदर लिरिक्स भी गाने के दिए होते थे। बाय गॉड की कसम, क्या आज हम लोग नहीं गाते हैं कैरियोके वगैरह में? हम जाते हैं और हम निकालते हैं ट्रैक के साथ साथ, हमें दिखना चाहिए हम साथ में गाना चाहते हैं, तब का कैरियोके ये था। आई मीन इट वॉज जस्ट द बेस्ट, इट वॉज सो अच्छा। खराब भी ये गैजेट्स इसी वजह से होते थे क्योंकि हमने ये अतरंगी तरीके निकाल रखे थे कि कैसे इसको फॉरवर्ड और रिवाइंड करना है, सो दैट वी नो दैट, क्योंकि आवाज आती रहनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग चल रहा है वहां पर। बट वेल, बड़ा जब थोड़ा सा वक्त और बढ़ा तो हम लोग कसत से सीडी प्लेयर पे आ गए, ठीक है? अब उसका भी तो यही है ना, पहले हम कसत लेके घूमते थे क्योंकि मुझे तो चूज करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कौन सी लू कौन सी, क्योंकि हर एल्बम में मुझे कुछ ना कुछ कोई ना कोई गाना पसंद ही होता था। तो माई वन बैग यूज टू बी ओनली ऑफ कैसेट्स, जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी। एंड देन आते थे जब सीडीज में, तो वो सीडीज के पूरे मोटे मोटे पैकेजेस जो है आते थे और उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट में आप अंदर बहुत सारे सीडीज रख सकते हो। बट सीडीज इतना चला भी नहीं, यू नो वाई? बिकॉज ऑफ द स्क्रैच इशू, ठीक है? एक स्क्रैच आया नहीं और हो गया, बस आपकी सीडी तो फिर वो अटकेगी ही अटकेगी, एंड दैट यूज टू बी सुपर डुपर इरिटेटिंग। 90s की बातें सिर्फ 90s वाली अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musty Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musty 24/7.
5: Pencil se kasat ki reel suljhana. Crush ka naam haath pe likhkar hai sharmana. ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
6: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप में। आई एम श्योर आपको बिल्कुल बिल्कुल ये 90s वाला जो है बातें सुनते हुए काफी मजा आ रहा होगा। 90s के घरों में एक पोजीशन काफी पावरफुल होती थी, ना ना ना प्रिंसिपल, हेड ऑफ द फैमिली, बॉस, नो, टीवी रिमोट वाला इंसान। और हर घर में एक पर्सन तो फिक्स होता ही होता था जिसके हाथ में रिमोट परमानेंटली होता था, पापा। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते तो ताऊ जी या दादाजी या फिर आपके एल्डर सिबलिंग जो खुद को टेक्नीशियन ही समझते थे कि नहीं मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, बस उसी को कह के हमारे हाथ से वो रिमोट फिसल फिसल के निकल के जाते थे। और टीवी देखते वक्त एक पैटर्न आई थिंक ऑलमोस्ट हर घर में 90s के टाइम में सेम ही था। सीरियल चल रहा है, वॉल्यूम परफेक्ट है, मूवी चल रहा है, सब मस्त अच्छा देख रहे हैं, फिर अचानक से आता है एड ब्रेक और उसी का सेकेंड रिएक्शन की अच्छा चलो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर। अरे भाई क्यों? फॉर पीपल लाइक मी जिनको एड ब्रेक देखना इतना ज्यादा पसंद था, जितनी शिद्दत से मैं बाकी चीजें देखती थी उतनी ही शिद्दत से मैं एड ब्रेक भी इंजॉय करती थी, क्योंकि मुझे बड़ा ही क्यूरियोसिटी के बारे में बोल कैसे कर देते यार, कितना अच्छा लगता है, कैसे बनाते होंगे, ये सारे सवाल जो है वो सोचने लगती थी। तो बट एनीवेज, बट ये तो जरूर था कि ऐड आ रहा है तो वॉल्यूम कम कर दो, ऑटोमेटिकली ये चीजें हो जाती थी, जैसे ऐड पर्सनली ही यू नो हमारे बड़ों को इरिटेट करने के लिए आ रहे हो। एंड द फनी थिंग, ऐड का वॉल्यूम सच में थोड़ा लाउड होता भी था, इफ यू ट्राई एंड रिमेंबर, राइट? सो रिमोट वाला पर्सन इंस्टेंटली बटन प्रेस करता था और पूरे घर को एक राहत के जैसे एकदम फील हो जाती थी, फिर सब इधर उधर हो जाते थे बिफोर इट यूज टू स्टार्ट अगेन। फिर जैसे ही शुरू हुआ तो फिर वॉल्यूम वापस उस पर पड़ा और पूरा टीवी का एक्सपीरियंस मैनुअली ऑपरेटेड। और वो रिमोट भी सिंपल थोड़ी ना होता था, कभी उसका बैक कवर मिसिंग है, कभी उसके सेल्स लूज हो रहे हैं, कभी उसको ठाप ठाप थप्पड़ मार रहे हैं चालू करने के लिए। हाँ, पहले टीवी को थप्पड़ मारते थे कि उसका सिग्नल ठीक हो जाए, उसके बाद फिर हमारे रिमोट्स आए, उसको हमने थप्पड़ मारना शुरू किया, आप चल क्यों नहीं रहा है। फॉर सम रीजन ये मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। होता क्या था कि बैटरी हो जाती थी लो और हम थे मिडिल क्लास फैमिली के, जब तक आखिरी कण ऑफ उसमें पावर खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको पीट पीट के जो है चलाते रहते थे। अब पीटते थे तो बैटरी भी थोड़ी हिल जाती थी, उसके बाद फिर वो आ जाता था। तो हमने लॉजिक वहीं से निकाल लिया, करना क्या है पीट दो, उसके बाद अपने आप ठीक से काम करना लगेगा। आई थिंक 90s के पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसा ही अपने बच्चों के साथ सोचा होगा, उन्होंने भी यही लॉजिक लगाया ना कि पीट दो सही हो जाएगा एकदम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर या कंटिन्यू टू बी विथ मी, यू विल हैव द मोस्ट अमेजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ राइट हियर राइट नाउ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

थोड़ा सा चीनी मिलेगा, थोड़ा सा नमक, हाँ बेसन है क्या आपके पास? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s के घरों में चलते हैं, जब कभी भी 90s के टाइम पर, भाई ये मस्ती 90s मिक्स टेप, जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होता था ना, तो गेस्ट लिस्ट से भी पहले तैयारी ये की जाती थी, ना खाने की नहीं, कि मेहमान इतने आएंगे घर में चेयर्स कितनी है ना। बर्थडे हो, पूजा हो, रिश्तेदार आ रहे हो ज्यादा, सडनली वो रियलाइजेशन आती थी कि बैठेंगे कहाँ सब कोई। एंड उसके बाद जो सबसे नॉर्मल वाली लाइन होती थी कि अरे वो चैटर्जी के घर में जाकर कुर्सियां ले आओ, या शर्मा जी के घर में जाकर जो है वो कुर्सियां ले आओ, उनसे बोल दो कि हमें चाहिए, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। बस कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, कोई हेजिटेशन नहीं था, सीधा जाकर और घर के सबसे छोटे बच्चों को भेजा जाता था यही सब कामों के लिए, कि जाओ आंटी से बोलो कि 5 प्लास्टिक की चेयरें जो है वो उनके घर में जो है वो मिल जाएगी कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर यूज टू बी हाँ हाँ लेकर जाओ, एंड वो क्लासिक प्लास्टिक चेयर्स, ओके वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, द रेड, द ग्रीन, द ऑफ वाइट कलर वाली, थोड़ी हिली हुई, आवाज करती हुई, पर हर इंडियन फंक्शन का बैकबोन, बेस्ट पार्ट, हर चेयर के नीचे किसी और का नाम मार्कर से लिखा हुआ होता था। और ये ना जानबूझ के करो, इट्स लाइक वो वाली चीज हो जाती है ना कि अब हमारा सामान है तो हमने अपना नाम जो है उसमें लिख दिया है, एंड बेसिकली हम बच्चों का काम होता था कि उस चेयर को लाएगा कौन, बड़े तो नहीं लाएंगे, तुमको भेजा है तुम लेकर आओगे। मैं और मेरा भैया से लाते हुए लाते थे, सो कभी एक हाथ, एंड स्टाइल क्या होता था, क्योंकि ये प्लास्टिक वाली चेयर ना एक के ऊपर एक आप डाल कर ना ला सकते थे, तो मतलब हमारे में तो कॉम्पिटिशन नहीं था कि किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब मैं आज की डेट में रियलाइज करती हूँ कि बहुत पहले से 90s में ही शायद शुरू हो गई थी, मतलब उसके ऊपर चेयर पे को कौन ज्यादा चेयर लेकर उठाकर जा सकता है। या और फिर मम्मी की आवाजें भी आती थी पीछे से, यार गिराना मत। अच्छा ट्रस्ट इश्यूज हमारे इतने ज्यादा इसलिए भी हो रखे हैं कि अगर तो चोट लगी तुम वापस आओ फिर बताऊंगी मैं, कहीं चोट लगी वापस आओ बताऊंगी मैं, हम क्या करें, जाए कहाँ। बट वेल सच्ची में 90s का जो ये नेबरहुड था वो काफ़ी अलग था, लोग सिर्फ पास ही नहीं रहते थे, कनेक्टेड भी काफ़ी रहते थे, कि कुछ भी चाहिए जो है पड़ोसी ज़रूर काम आ जाए, पड़ोसी तो ही पड़ोसी के काम आता है, ये आई थिंक वहीं से आया है। आज RSVP का कल्चर है, इवेंट के रेंटल्स है, परफेक्ट प्लानिंग होती है, तब जुगाड़ था यार, पर वार्म्थ जो है वो आई थिंक फुल ऑन थी, आपको नहीं लगता? कुछ याद आया आपको 90s के नेबरहुड वाला कोई किस्सा? 9158963 पर जरूर मुझे बताएं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल टाइम हो चुका है एक 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक का।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 75.

0: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: भाई 90s में प्लेलिस्ट बनाना कोई ऐसा आम काम थोड़ी ना था, बहुत ही मेहनत लगती थी, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो होता था, फुल डेडिकेशन वाला। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। आज कम हम क्या करते हैं, क्रिएट प्लेलिस्ट करते हैं, या हमारे फोन पे है या फिर कहीं पर भी है, एक टैप से सब कुछ हो जाता है। तब हम कसेट को पर्सनली क्यूरेट किया करते थे, इतनी शिद्दत जाती थी, इतना पैशन जाता था उसके अंदर। सो ब्लैंक कैसेट एक तो खरीदी जाती थी सबसे पहले, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर वाली, अंदर वो छोटा सा वाइट कलर का लेबल, और फिर स्टार्ट होता था सबसे इंपॉर्टेंट काम कि इस कैसेट को यानी कि इस मिक्स टेप को नाम क्या दिया जाएगा। स्केच पेन निकालो, वो 12 वाली जो आती है सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है, और जो हमेशा खो जाती है, मतलब कभी ऐसा, मतलब मेरे घर में तो मैंने तो नहीं ही देखा है, क्योंकि मैं बहुत ही हम लोग अच्छे बच्चे थे, तो उसमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गायब ही रहता था कोई कलर। सो अब नाम क्या लिखना है, स्केच पेन निकालो, फुल एटीट्यूड के साथ लिखो, सैड सॉन्ग्स, डांस मिक्स, कुमार सानू हिट्स, ओके, इंग्लिश हिट्स 1, Volume 1, Volume 2, 3, या और हैंड राइटिंग जो है फुल अर्न एकदम। इसमें तो भाई मैं तो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, और साथ में ड्राइंग भी जो है कई सारे लोग करते थे मेरे जैसे, जो हार्ट्स बना दिए, डिफरेंट कलर्स यूज कर लिए, कभी डबल बॉर्डर डाल दिया, कुछ कर दिया, फिर एक्चुअल रिकॉर्डिंग का प्रोसेस, ठीक है, आप या तो टेप टू टेप कर रहे हो, ठीक है, फिर वो रिकॉर्डर प्ले पे जो है रख दो एकदम ऐसे, अब आएगा वो मोमेंट, वैसा वाला एकदम हम लोग तैयार रहते थे कि रेडी स्टडी गो। ओ गॉड, और वी हैड टू मेक श्योर, ओके, कि एकदम स्टार्टिंग से हो। अगर आप रेडियो से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो हमें तब इंतज़ार होता था कि हमें अनाउंसर की आवाज़ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ गाना चाहिए, क्योंकि कसेट में लिमिटेड जगह है, राइट, तो जैसे वो बोलना बंद करता था तो हम लोग वहाँ पे प्रेस किया करते थे, नहीं याद नहीं आया। एंड हर कसेट का भी मूड अलग हुआ करता था, है ना, जिस तरह के गाने उसमें, एंड इवन बिफोर दैट यू हैड टू थिंक कि कौन कौन से वो गाने हैं जो आपको इस वाले मिक्स टेप में डालने हैं, राइट। अभी क्या है कि आजकल कितना, मुझे एक्चुअली में लगता है आजकल काफ़ी इजी हो गया है बिकॉज ऑफ AI। अगर आपने कोई गाना एक सुना तो अगला गाना भी AI आपको आपके टेस्ट के हिसाब से ही जो है सजेस्ट करता है। 90s में बॉस अपना टेस्ट खुद आपको पता है, एंड नाउ यू हैव टू गो ऑन द हंट ऑल फॉर यू विद योर सेल्फ। या तो आपको गाने के नाम पता है, या तो आप पिछले 6 महीने से इकट्ठा कर रहे हो, लिखे जा रहे हो कि अब मेरे पास 20-30 गाने हो गए हैं, नाउ आई कैन गो एंड गेट अ मिक्स टेप एंड गेट इट डन। और उसमें भी ना वो मिक्स टेप बनाने का भी हो, तो बाद में जो है वो कसेट वाले भैया जो है वो आए, उन्होंने करना शुरू किया, बट उससे पहले तो खुद ही सब कर रहे थे ना, तो वो तो मतलब काफी लंबा चौड़ा, मैं कह रही ना प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज का प्रोजेक्ट मतलब अभी अभी के गाने आपके लिए 90s वाले।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराम के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। यस, एंड भाई क्योंकि अब हम घरों में घुस चुके हैं, मिक्स टेप और न जाने क्या क्या चेहरों की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है भाई। बात तो होनी चाहिए यहाँ पर उसकी भी जो अनदर जुगाड़ का लेवल। तो देखिए अभी आजकल क्या है ना कि कभी कुछ गीला हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर आज भी हमारी फर्स्ट वो चीज़ होती है कि अगर पंखे से सूख जाता है तो सूख जाने दो। हालांकि यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट, यू हैव अ बालकनी एंड यू हैव एन आउटर स्पेस, तो आप बाहर कपड़े जो है बिल्कुल सुखा सकते हो। 90s में जब ये लैंडेड घर हुआ करते थे या फिर ये सारी चीज़ें, तो हम लोग भी बालकनी में कपड़े जरूर सुखाते थे, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन ये होता था कोई भी चीज़ जैसे बारिश से गीली होकर घर पे अगर एंटर मार चुकी है तो फिर उसको हम सीधा पंखे या कूलर के सामने जाकर उसको इंस्टेंट सुखाने की जो कोशिश है वो की जाती थी। सो 90s का रेनी सीजन जो है सिर्फ बारिश नहीं होता था, सर्वाइवल का चैलेंज भी हुआ करता था ना। एंड स्कूल गोइंग किड्स का तो मतलब क्योंकि जूते गीले हो जाते थे ना सुबह स्कूल जाते वक्त, तो सब ठीक, पर जब वापस आए तो ऑफ कोर्स द शूज आर कंप्लीटली सोक्ड, रोड पे पडल्स, गंदा हो रखा है, रिक्शा के स्प्लैशेस, स्कूल के ग्राउंड की मिट्टी एंड व्हाइट सॉक्स का कलर ऑफिशियली चेंज। ओके, सो घर आते ही फर्स्ट थिंग भाई शूज निकालो, सीधा जो है पहले तो फैन के नीचे रखो, उसके बाद तो फिर सफाई अभियान जो है उसको शुरू करना पड़ता था। एक शू इधर, एक शू उधर, एंगल जो है परफेक्टली उसको सेट करो ताकि हवा अंदर तक जाए। और वो वेट सॉक्स का ट्रॉमा, ओ माय गॉड, कभी न्यूज़पेपर अंदर उसको भर दे ड्राई करने के लिए, कभी यू नो बालकनी वाला मिशन की उसके बाद मतलब होता मोस्ट ऑफ द टाइम यह था कि जूते एक पैर ही होते थे क्योंकि उस टाइम पे बाटा के जूते मिलते थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। अब वो अगर एक पैर आपने ख़राब कर दिए तो आपको दूसरा पैर खरीदना पड़ेगा, विच यूज़ टू बी अ बिग डील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन मिडिल क्लास फैमिलीज, क्योंकि वो मतलब बजट हिल जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स यूज़ टू कम इन टू एक्शन। बट देन या हम उसको पहले यू नो धो धा के कि फटाफट से उसको साफ कर दिया, अब इसको सुखाना है क्योंकि कल सुबह पहन के जाना है। देर आई एम श्योर देर वर डेज वहाँ पे जब 90s में जो बच्चे हैं वो हल्का गीला जूता पहन के भी आए होंगे। या बिकॉज यू नो अब जो डिसिप्लिन है वो है स्कूल में, भाई हमें डायरी में रेड पेन से ऐसा लिखवाना नहीं है, तो फिर बस हमें वो करना पड़ेगा जो हमारे बस में है भाई। कूलर से ज़्यादा जल्दी जो है वो सूख जाता था। बहुत ही फनी लगता था। आप जस्ट इमेजिन करो कि कूलर के सामने बच्चा खड़ा हुआ अपने स्कूल शूज गीले वाले सुखाने के लिए, वहाँ पे ऐसे करके खड़े हुए होते थे, ऐसा लगता है किसी ने हैंड्स अप की जो है ना पनिशमेंट दे दी हो, और सूखेगा। उम्मीद पे पूरी दुनिया हमारी जो है, उम्मीद और जुगाड़ पे दुनिया जो है कायम हुआ करती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आई एम श्योर दैट आपको उन दिनों की ज़रूर बिल्कुल याद आती होगी व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओवर हियर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: क्या है ये? और क्यों याद है मुझे ये? आई हैव नो आइडिया। 222028 क्या है ये? क्यों याद है मुझे ये? कोई बता सकता है क्या है ये? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ओ गॉड, सीरियसली, मैं वाल्टर आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड यस, 90s की बात हो रही है और 90s की एक चीज जो हमें ऐसा लगता था कि एकदम दिल से, मन से, गट से, आई डोंट नो कहाँ से, बट फोन नंबर्स हमें किस हिसाब से याद है? सो 25686, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर बट इट एग्जिस्ट इन माई मेमोरीज सो वेरी वेल। मेरे घर के लैंडलाइन का नंबर था 256865। इट्स सो क्लियर, विदाउट एनी हिच आई कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट रिपीट दिस नंबर। 222028 था मेरे डैड के ऑफिस का नंबर। एंड या इसीलिए, क्योंकि मैं कभी कुछ लाना हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ उनको बताना हो, तो आई यूज टू, एंड दिस इज वॉट इट इज, राइट? 90s में मेमोरी सिर्फ इमोशन स्टोर करने के लिए नहीं होता था, फोन नंबर्स एकदम फुल ऑन स्टोर करने के लिए होता था, मुझे ऐसा लगता है। इतनी मिनी डायरेक्टरी हम बन बन के घूमते थे यार, कि यू नो, मम्मा का कर लिया, बेस्ट फ्रेंड का कर लिया, ट्यूशन टीचर का कभी नहीं किया, पापा का कर लिया। तो आज हम ना कभी, एंड दिस इज सो फनी, देर आर टाइम्स कोई मुझसे मेरा नंबर पूछता है ना, मैं ना 2 सेकेंड के लिए ना वैसा हो जाती हूँ, ब्लैंक हो जाती हूँ। एक मिनट, हाँ क्या था वो? बट या, लैंडलाइन डायल करना भी एक प्रोसेस हुआ करता था। रिसीवर उठाओ, डायल टोन पहले सुनो, फिर नंबर को प्रेस करो धीरे धीरे। कभी रोटरी फोन हो तो वो और भी ज्यादा सिनेमैटिक हो जाता था, फिंगर्स घुमा घुमा के, फिर वो व्हील वापस आने का वेट। और अगर एक डिजिट उसमें गलत हो गया, हे भगवान, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। इसीलिए नंबर्स जो है ना प्रॉपरली याद होते थे। एंड फनी थिंग इज, कुछ नंबर्स तो मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े होते थे फिर भी हमें याद है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मली कहती हूँ मुझे कोई चीज़ रट्टा नहीं होती है, पता नहीं ये सारी मैं मेरी मेमोरी बहुत वियर्ड है। मैं अब ये पूरी तरह से मुझे विश्वास हो गया है इस बात पर। बट एनीवेज, 90s में कॉन्टैक्ट फोन में सेव कम होते थे, रिलेशनशिप्स आई थिंक दिमाग में सेव ज़्यादा होते थे। किसी का नंबर याद होना मतलब वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। कभी इमरजेंसी में डायरी जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ती थी, इंस्टेंट डायल कर लिया जाता था। घर में भी एक स्पेशल टेलीफोन की डायरी जो बिल्कुल टेलीफोन के बगल में ही रखी जाती थी, और उसमें यू नो ब्लू इंक से नाम लिखे होते हैं, देवर क्रॉस्ड आउट ओल्ड नंबर्स, साइड में न्यू नंबर। आजकल इट्स वेरी वेरी ईजी, राइट? सर्च बार है, देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। बट तब मेमोरी पावर थी यार, इसीलिए कनेक्शन भी थोड़े स्ट्रॉन्गर से लगते थे, क्योंकि उन्हें एक्सेस करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगता था। उसी के साथ साथ अगर तो बात हो आपके क्रश की या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नंबर की, देखो याद तो हो जाता था, लेकिन द सिस्टम ऑफ डाइविंग इनटू अ डायरेक्टरी एंड हंटिंग आउट अपने क्रश का नंबर वॉज अनदर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च ऑल टुगेदर। I shall let you know about that in just a while, but Radio Masti 24/7 live par, filhal bane rahiye mere sath.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
2: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
1: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffle City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
3: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
4: Blue fingers just before exams. In fact, I had blue fingers most of the times. Not only fingers, my shirt was almost, there were a lot of blues over there as well. Radio Masti 24/7 live on Trap ke saath Masti 90s mixtape mein bhai 90s ke school ka life ka jo ek permanent color tha, royal blue ink, theek hai? एंड वो जो एग्जाम्स के टाइम पे तो आई थिंक एक मिनी सा स्टेशनरी वर्कशॉप बन जाता था हर किसी का घर। ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो रेडी कर लो, एडमिट कार्ड रेडी कर लो, एक्स्ट्रा निब जो है वो रेडी कर लो, एक्स्ट्रा रिफिल रख लो, एक्स्ट्रा पेन्स रख लो, और फिर आता था सबसे रिस्की काम, फाउंटेन पेन रिफिल करना। चल पार्क, चेल पार्क नाम है उस शीशे की बोतल का जो कि लानी पड़ती थी। इंक बोतल को खोलो और एक वो एक स्मेल सी आती थी, एंड देन उसके बाद पूरी कंसंट्रेशन के साथ पेन का एक सेक्शन खोलना, ड्रॉपर या फिर कन्वर्टर को फिल करना, और फिर बस स्प्रे करना कि गिरना नहीं चाहिए। दैट वाज द प्रॉब्लम कि अगर तो गिर गया और लग गया कहीं और पे, गिरता तो था ही वैसे, बट देन फिर भी तो आपके जो है उंगलियों पे इंक, नील के साइड पे इंक, कभी शर्ट पे इंक, कभी टेबल पे, फुल डिजास्टर। उसके बाद तो फिर मम्मी का गुस्सा एंड एवरीथिंग, फिर बाथरूम जाके उसको घिस घिस के साबुन से घिस घिस के जो है वो क्लीन करना। पर वो ब्लू स्टेन 2-3 दिन तक ऑफिशियली जो है वो रहता ही रहता था। फनी थिंग इज दैट स्कूल में हाफ ऑफ द क्लास वॉज इन द सेम कंडीशन, राइट? किसका पेन लीक हुआ, मेरा कन्वर्टर फंस गया था। एंड 90s में राइटिंग स्मूथ नहीं काफी इन्वॉल्व थी, ठीक है? आज क्लिक करो एंड पेन खोलो और लिख लो, तब राइटिंग से पहले भाई प्रिपरेशन होती थी कि इंक फिल करो, निब चेक करो, रफ पेज पे ट्रायल कर लो घुमा घुमा के। रफ पेज से भी ज्यादा आई थिंक अगर आप डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर ये सारा काम कर रहे हो तो फोन के पास में रखी हुई वो जो फोन वाली डायरी होती थी उसी में सारे हम लोग चला चला के टेस्ट करते थे कि चल रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि यू नो एफर्ट जो है ना वो काफी विजिबल था 90s में इस तरह से, एंड वो हैंड राइटिंग का ऑब्सेशन भी कि भाई इंक फ्लो अच्छा जो है अगर आ रहा है तो फिर मजा ही। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू राइट विद अ फाउंटेन पेन एंड इफ द इंक फ्लो इज वेरी गुड, बहुत सही राइटिंग आती है, एकदम वाली राइटिंग आती है। आज कन्वीनियंस ज्यादा है तब कनेक्शन ज्यादा था स्टेशनरी के साथ भी, और शायद इसीलिए वो ब्लू फिंगर्स आज भी हमें याद है, क्योंकि वो सिर्फ इंक नहीं थे, एग्जाम सीजन का ऑफिशियल एक बैज मान के चलो वैसा फील हुआ करता था। प्रॉब्लम उसके साथ ये भी थी कि धुलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसी वजह से मम्मी भी कहती थी कि भाई थोड़ा सा संभाल के शर्ट वर्ट पे मत लगाओ क्योंकि ये दाग जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अलग तरीके की मतलब जुगाड़े लगानी पड़ती थी उनको कि कैसे कैसे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट सिर्फ इंक पेन नहीं, इनफैक्ट बॉल पेन की इंक और ज्यादा जो है वो इट वॉज इवन टफर टू टेक आउट समहाउ, है ना। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यूं ही हम 90s वाली यादें ताजा करते हुए जाएंगे, लेकिन साथ साथ में 90s वाले गाने भी सुनते हुए जाएंगे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: रुकावट के लिए खेद है। कब आएगा, कब वापस आएगा? इसी इंतजार का नाम 90s था मेरे दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s के टीवी का वाचिंग एक्सपीरियंस, सबसे इमोशनल विलन कौन कौन था? ना ना, सीरियल की वैम्प नहीं, क्रिकेट का अंपायर नहीं, रुकावट के लिए खेद है। मूवी एंड मैच जो है, जब भी एंड समहाउ जब भी अपने पीक पे पहुंचा नहीं और सडनली स्क्रीन हो जाती थी फ्रीज, फिर वो कलर वाले बार्स आते थे या फिर वो स्टैटिक स्क्रीन आती थी जिसको हम स्नो कहते हैं, वो मुझे तो कभी भी नहीं पता था। एंड फिर वो नीचे लाइन आती थी कि रुकावट के लिए खेद है। एंड यू नो इट एक्चुअली मैं ऐसा लगता था जिंदगी थोड़ी देर के लिए एकदम पॉज सी हो गई है, अभी इतना इंपॉर्टेंट सीन था। अच्छा फिर दिमाग में ऐसे आइडियाज आ रहे हैं कि एंटीना जाके चेक करो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, फिर स्टार्ट होता था पूरा फुल ऑपरेशन। कोई बालकनी में एंटीना घुमा रहा है, कोई नीचे से चिल्ला रहा है कि हाँ हाँ क्लियर हो गया, अरे अरे रुको रुको, नहीं नहीं नहीं थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, और टीवी के साइड पे वो ऑफकोर्स मैंने कहा ना, जब तक ठोको पीटो नहीं तो वो वाली चीज़ भी ट्राई करनी ज़रूरी होती थी। जैसे उससे सिग्नल जो है इमोशनली बेटर फील करने लग जाएगा कि अरे धत पगले तू क्या सोच रहा था कि नहीं चलेगा, एक और लोड पटाक। 90s में एंटरटेनमेंट इजी एक्सेस नहीं था, अर्न्ड एक्सपीरियंस था। मूवी देखनी है पेशेंस चाहिए, क्रिकेट मैच देखना है, सिग्नल का कोऑपरेट करना भी उतना जरूरी है। आज बफरिंग पे मतलब 5 सेकंड में हम इरिटेट हो जाते हैं, तब 10 मिनट का इंटरप्शन के बाद भी हम वही उसी एक्साइटमेंट के साथ उसका वेट किया करते थे क्योंकि कंटेंट लिमिटेड था और वैल्यू काफ़ी ज़्यादा। एंड ऑनेस्टली वो इंटरप्शन के मोमेंट्स भी काफ़ी काफ़ी यू नो मेमोरी टाइप के बन गए क्योंकि पूरा घर ही उसमें इन्वॉल्व हुआ करता था कि कोई पापा एंटीना के इंस्ट्रक्शन देंगे, बच्चे विंडो पर जाके खड़े हो जाएंगे, मम्मी बोल रही है इतना टीवी देखोगे तो यही होगा। इसीलिए टीवी भी चला गया, वो भी थक गया, फिर सडनली पिक्चर वापस आ जाता है एंड पूरे घर का रिएक्शन जैसे बिजली आ जाती है ना, चलो आ गया। जैसे इंडिया ने खुद का वर्ल्ड कप एक्चुअली में जीत लिया हो उस मोमेंट में। 90s का टीवी एक्सपीरियंस इतना अलाइव लगता था एंड इनफैक्ट अभी भी याद कर रही हूँ तो लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ वॉचिंग नहीं थी यार, वेटिंग भी थी। रेडियो वस्ती 24/7 लाइव पर ऐसी ही वॉचिंग एंड वेटिंग, सिर्फ लिसनिंग करनी है आपको और इमेजिन करना है। तो आप ये शो सुनकर आपको लगेगा हमेशा दैट यू आर इन दोज मोमेंट्स ऑफ 90s ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: प्रेम, निशा,
3: राहुल,
2: अंजलि,
4: टीना,
2: इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
5: कभी आपने अपने क्रश के हाथ से जो है ड्रॉप हुआ, लाइक उसने खाया एक टॉफी या कैंडी और उसने ड्रॉप किया उसका रैपर नीचे, उसको उठा के सहेज के अपने पास एज अ मेमोरी जो है वो रखा हुआ है? इट्स सच अ 90s थिंग। मैं सीरियसली सोचते कैसे मैं एकदम यू नो ऐसे बटरफ्लाई से जो है वो फील होने लगे हैं। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड दोज आर द डेज राइट व्हेन आपके क्रश या आप जिस किसी को अगर पसंद करते हो उनकी हर एक चीज जो है ना आपको बटरफ्लाइज दिया करती थी। तो ऐसा होता था, ठीक है? तो जैसे कैंडी खाई, नीचे डाल दिया तो वो कैंडी का रैपर उठा लिया। कभी ऐसे ही यू नो गार्डन से कोई, शायद उसने पत्ता उठाया होगा, वो पत्ता उसके हाथ से छुआ लेकिन उसके हाथ से छू के वो नीचे गिर गया, वो पत्ता उठा लिया, वो हमने डाल दिया बुक्स के बीच में, सो दैट यू नो कभी वो बुक वापस से खुले और वो सूखा हुआ पत्ता देखे और सूखे

हुए पत्ते के साथ हमारी सारी यादों के दरवाजे और उसका चेहरा जो है बिल्कुल सामने आ जाए कि हाय ये तो उसको छू के आया था। हैंकीज राइट, कभी किसी का गिर जाए नीचे, फिर वही हाथों में आ गया चक्कर रुमाल आपका, गाने शुरू हो जाते थे बैकग्राउंड में। बट नॉट ओनली दैट, द पीपल हु वर इन रिलेशनशिप्स, फूल को किताब के बीच में रखना और इस तरह से उसको सजा के एंड एज अ मेमोरी उसको प्रिजर्व करना, सच अ 90s थिंग मैन। लाइक रोमांस का तरीका ही जो है काफी काफी डिफरेंट था, क्योंकि इतने मिलने के मौके नहीं मिला करते थे एंड इट वाज मोर अबाउट फीलिंग्स देन एनीथिंग एल्स व्हेन वी टॉक अबाउट 90s, कि आंखों आंखों में अगर देख लिया उधर आंखों आंखों में कुछ बातें हो गई, ठीक है, अगर हल्का सा हाथ भी टच कर गया तो ऐसा लगता था करंट, ओ माई गॉड, करंट का भी अगर कोई हायर वर्जन है, लाइटनिंग थंडरिंग इनसाइड द बॉडी विच यूज टू फील, वी नेवर अंडरस्टूड वॉट फीलिंग वॉज दैट, बट देन बिकॉज वी डिडंट हैव अ नेम टू दैट फीलिंग, हमें लगता था कि यार ये क्या हो गया, क्या ही हो गया, इट वॉज सो एक्साइटिंग राइट, ऐसी एकदम अमेजिंग सी फीलिंग हुआ करती थी, ठीक है, कि उसने मेरा नाम ले लिया, लाइक वाओ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ये बातें यूं ही बिल्कुल, आप चाहते हो ना मैं जब भी ये सारी बातें करती हूँ लोग मुझे लिख के रुकना मत, नहीं रुकना तो पड़ेगा ना, मैं बोलती थोड़ी ना रहूँगी, ठीक है, 90s वाला ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हम रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus per adult and $42 plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: पैसों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अरे वो वाली बात तो रही गई थी जहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी में नाम ढूंढ रहे थे, अभी थोड़ा सा रोमांटिक सा माहौल सब बन गया ना, तो फिर मुझे लगा कि वो वाली बात तो कर दी, फिर सब एकदम मूड के हिसाब से होना ही चाहिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हैं अंतरा के साथ यहाँ पर। भाई क्या है कि अगर आपने किसी का नंबर ढूंढना है तो हमें आती थी वो येलो बुक, यानी कि डायरेक्टरी जो है बिल्कुल हर किसी के घर में पाई जाती थी। अब उसमें से निकालना किसी का नंबर जो है ना, वो डिक्शनरी हो या डायरेक्टरी, बहुत मेहनत लगती थी। इसीलिए आई थिंक सिंसियरिटी इन एनीथिंग वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द 90s, बिकॉज यू हैव वर्कड योर वे थ्रू इट, यू गेटिंग माय पॉइंट, कि आपने इतनी मेहनत की है। ठीक है भाई, अगर आपने किसी को देखा, उसका नाम आपको पता है, ठीक है, अब उसके नाम से तो होगा नहीं, उसके पापा या मम्मी के नाम से होगा, पहले उसके पापा या मम्मी का नाम निकालो, है ना। जब ये उनका नाम आ जाए तो फिर डायरेक्टरी में जाओ, फिर जाओ। अच्छा कई बार ऐसा होता था कि हमें उन्हें मोहल्ले का पता लगाना पड़ता था, कि अगर मोहल्ले का नाम पता चल जाए तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं डायरेक्टरी में जाकर कि हमें ये नंबर। अब फिर उसके बाद फिर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो शॉर्टलिस्ट की जाती थी, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते थे, सो होते थे क्या होते हैं अभी भी, उसको शॉर्टलिस्ट करके अब सारे नंबर एक एक करके डायल करो, है ना। फिर उसके बाद फिर बड़ा ही मुश्किल होता था यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इट यूज टू बी सच अ वेस्ट, इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, इट इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट व्हेन यू आर इन दैट काइंड ऑफ जोन एंड यू आर इन द 90s, भाई हमारे पास पेशेंस ही पेशेंस है, हम पूरी शिद्दत से और पूरे पैशन के साथ ये सारा जो है प्रोसेस किया करते थे, और लगाया हेलो बोला नहीं, एंड मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा ही या फिर वो बंदी जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वही फ़ोन उठाए, वो तो आपके सितारे अगर गर्दिश में है तो उठा लिया, अगर नहीं है तो फिर आपने सारे नंबर घुमा लिए। एंड वंस यू गेट दैट नंबर, ओके, द फीलिंग ऑफ दैट अचीवमेंट कि भाई आज तो हमने कुछ अलग ही फोड़ दिया, और जो स्माइल पूरे दिन और वो जो डोपामिन हिट होता था, आप ना खुश हो लाइक फॉर नो रीज़न, आप खुशी घूम रहे हो, है ना। बंदे की आवाज़ सुन ली एक बार, भले ही आपने ब्लैंक कॉल करके काट दिया हो, खुश घूम रहे हैं मस्ती में, जोन आउट हो रहे हैं उसकी यादों में कि हाय मैंने तो उसकी आवाज व्हाट बंदा, ठीक है, किसी और की बाइक पे बैठा हुआ था, वो वहां से चला गया, आप जाके उसी जगह पे अगर बैठ जाते हो तो मतलब आपकी फीलिंग अलग रोमांटिक लेवल और थॉट्स जो है काफी रोमांटिक से जो आने लगते हैं, ओ माई गॉड ये यहीं पे बैठा था, उसकी फीलिंग अभी भी यहाँ पे इधर ही हो। डूड ऐसे थोड़ी ना, वो बॉटल झूठा इनडायरेक्ट किस, ऐसे थोड़ी ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं तैयार हुए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, बट आई थिंक आई नीड टू होल्ड ऑन टू माई हॉर्सेस विच आर 90s के साथ साथ काफ़ी ज़ोर से दौड़ रहे हैं, और चलते हैं गानों की तरफ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
4: रहो। रेडियो मस्ती 24/7। डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं अंतरा गाओ मत, गाओ मत अंतरा। आई नो अब लास्ट है, सबको जाना है, इसका भी थोड़ी ना कि मैं ऐसे शुरू हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ, मैं अपने आप से बात करती रहती हूँ, कंट्रोल किया मैंने अपने आप को। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे थे। लेकिन अब क्या है ना कि या 90s के शोज की तरह इस शो को भी और मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। बाय द वे, इफ यू हैव नॉट रियलाइज्ड, भाई इस शो का ऑनकोर भी आता है। लेट मी जस्ट काइंड ऑफ टेल यू दैट इसका शो का ऑनकोर आता है हमारे सैटरडे जो है मॉर्निंग 8 बजे। सो जस्ट इन केस आपको लगता है कि आपने ये मिस कर दिया हो, ठीक है, मैं अपना शो ही सुनती हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ सुनते हुए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग समटाइम्स यू नो पीपल जस्ट लिसन टू इट ऑन रिपीट ओनली, बिकॉज गाने यार अच्छे ही लगते हैं यार। कितनी बार भी इन गानों को सुन लो, एक हफ्ते में दो बार तीन बार भी सुन लो, दे आर नॉट गोइंग टू फेड अवे फॉर अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टाइम, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दे डोंट फेड अवे, बिकॉज दैट इज माय पैशन टुवर्ड्स दिस होल जो है शो मस्ती 90s मिक्स टेप। सो वेल, मुझे फिलहाल दो इजाजत, एंड एक और नायाब सा जो है एपिसोड फ्रेम करके और बना के क्यूरेट करके आपके लिए बिल्कुल स्पेशली लेके आऊंगी। वापस से चलेंगे 90s के गलियारों में। बट द खूबसूरत बात अबाउट दिस शो इज दैट पता है कि इसका इफेक्ट काफ़ी काफ़ी टाइम तक रहेगा। आज तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन आने वाले दो तीन दिनों में और भी ज़्यादा रहेगा। सो इसको इन्जॉय करिए, हर वो याद को इन्जॉय करिए, एंड हर उस याद के साथ वो जो स्माइल आती है ना, वही स्माइल बरकरार रखे हमेशा। दैट्स व्हाट आई विश फॉर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: की याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: नाचने का मन है
6: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
2: मुझे जान पहले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेली है
3: जोश में रहो
0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश Your daily scoop of what's hot, what's viral, and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday, subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan.
4: Mere Karan Arjun
0: aayenge. Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना। तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे, बादशाह के गाने सारे याद हैं।

0: बचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
3: Monday Blues. No, no, no, not on our watch. Wake up to world news, fresh updates और थोड़ा Bollywood का मजा भी। Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 AM onwards.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

वेलकम टू योर जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

अगला गाना तुसी सुनोगे पंजाब दे तड़कीले ते भड़कीले नौजवान गबरू घातक दी आवाज। इस गाने की फरमाइश की है लुधियाने तो सुखविंदर सिंह, हुशियारपुर तो बेबी बेदी ते अजरौर तो मिंटू जी ने। पेश है बंब गाना।

मोर बना दे ए, ये माल थोड़ा मवाली है, हर सेंटेंस में गाली है, ना बम बहना पटाखा है, ये लड़की पूरी दिवाली है।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
4: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
3: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration. Shahi Mahar Rani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi Lunch and Dinner at Shahi Maharani, Raffles City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
2: Oh, well, hey, hi, mic on, headphones check. Yes, हो गया है हमारा connection established. क्या हाल चाल? आप दुनिया के जिस भी कोने से मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा वेलकम और बहुत सारा नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ आपके तिरकिट था मुग्धा, लाइव फ्रॉम द लायन सिटी। और ये जो है आपका फेवरेट शो है, दैट इज मस्ती हैंग आउट, यानी कि हमारा प्यारा MHU। सो माय डियरीज, आज है थर्सडे यानी कि 7th of May, और सिंगापुर में मौसम का मिजाज उसके बारे में क्या ही बात करूं। पल में तोला पल में माशा हो जाता है, कभी ग्रे है तो कभी सनी है, बट ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है वेदर इज जस्ट परफेक्ट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। अब मेरे कहते कहते भी वेदर बदल सकता है, तो इसलिए मेरी बातों को इतना विश्वास मत करना। मैं इधर बोलूंगी और वेदर मेरी बात सुन के बदल जाएगा, इसलिए तो मैं ऐसी बातें करती हूँ। पर कोई बात नहीं, अगर आपको फील हो रहा है कि एनर्जी आपकी थोड़ी लो जा रही है तो कोई बात नहीं है, जस्ट चिल करो। मेरी आज की बातें सुन के आप 100% चार्ज हो जाओगे। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो मेरी इंटेलिजेंस कैप्सूल है, ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आज के दिन 7th of May 1946 में एक बहुत फेमस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिनका पहला प्रोडक्ट जो है वो कोई वॉकमैन या कैमरा नहीं था। इट वॉज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक राइस कुकर। कैन यू गेस मैं कौन सी कंपनी की बात कर रही हूँ? चलिए आप सोच के मुझे बताइए कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रही हूँ जो आज के दिन शुरू हुई थी और उनका पहला प्रोडक्ट कोई बहुत ही फेमस वॉकमैन या कोई कैमरा नहीं था जो कि वो अक्सर बनाते हैं। इट वॉज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक राइस कुकर, एंड द फन फैक्ट इज वो चावल ठीक से पका भी नहीं पाता था। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, शुरुआत चाहे अधपकी हो, मेहनत अगर आप करते रहो ना तो आप भी वो कंपनी बन सकते हो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। फिलहाल आई विल बी राइट बैक इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: लड़के।
1: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का।
2: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, और हम वापस आ गए हैं ऑन मस्ती हैंग आउट। आप सुन रहे हैं मेरे साथ MHO, मैं हूँ आपकी मुग्धा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगापुर में ना मैंगो सीजन की धूम है, राइट? अभी ना स्टूडियो आते वक्त ना मैं देख रही थी कुछ पेड़ जिन पे बड़े रसीले आम मुझे दिखाई दिए, लदे हुए हैं वो पेड़ों पर आम इस वक्त, और बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप रास्ते पर चल रहे हो और आपको एक परफेक्ट मैंगो जमीन पर गिरा हुआ दिखे तो उसे उठाना नहीं है जी, उसे उठाने की गलती मत करना। यहाँ सिंगापुर में एक इंटेलिजेंस कैप्सूल की बात गांठ बांध लो। सिंगापुर में, बिलीव इट और नॉट, सिंगापुर में फॉलन फ्रूट उठाना एक्चुअली चोरी माना जाता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स, सारे रास्ते पर जो पेड़ है ना वो स्टेट प्रॉपर्टी है। अगर आपने वो गिरा हुआ आम उठाया तो आपको $50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है एक गिरे हुए आम की वजह से, जमीन पर गिरे हुए आम की वजह से, सो जमीन से आम उठाना फ्री नहीं, बहुत महंगा मैंगो पड़ेगा। लेकिन आपको मैंगो और कहां से मिल सकता है मैंगो ना बताने के लिए,
2: हौली हौली गिद्दे विच नच बदलोनी तेरा लख ना मरोड़ा खा जा।
1: ध्यान से सुनना इस ब्रेक के बाद।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, welcome back. So, please don't be a mango chore just because it looks very tempting. अगर असली रसीले और सबसे इम्पोर्टेंट बात लीगल आम खाने हैं, बहुत मन कर रहा है तो मेरे पास एक फूल प्रूफ मैंगो प्लान है, आम प्लान है। सीधा जाइए जीजी मार्ट पर, ऑनलाइन जीजी मार्ट ऑनलाइन, क्योंकि ना वहां पर पेड़ से गिरे हुए ये वाले आम नहीं है, वो वाले आम है जो एक्चुअली आप एक बार खाएंगे तो खाते रह

एक्शन को नहीं देखा जाएगा उसमें। यहाँ पे आते हैं मेरी इंटेलिजेंस कैप्सूल का, पूछो क्यों? क्योंकि ggmartonline.com जो है आपके घर पहुंचा रहा है वो रसीले आमों का टोकरा। वैसे आपको पता है कि आमों को आम को किंग ऑफ फ्रूट्स सिर्फ टेस्ट की वजह से नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं? इस आम में ना कुछ भी आम नहीं है, सब कुछ बहुत खास है। इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होता है, इतना सारा होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को एकदम जुब रॉयल लेवल पर ले जाता है, सर पे ताज पहन करके सीधा। इसीलिए तो ये आम जो है ना ggmartonline.com पर आपको मिलेंगे। पर एक और चीज है जो आपको मिल रही है, दैट इज अ कोड new10। अगर आप इस कोड new10 का इस्तेमाल ggmartonline.com पे करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सोचो, एक तो लीगल है और डिस्काउंट भी है, वो भी लीगल है। तो जाइए जल्दी शॉपिंग करिए, और अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं GGMart की वेबसाइट पर तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर 9151893 पर भेज दीजिएगा। एक और ऑफर मिलेगा आपको, भाई साहब इतना लीगल तो लाइफ में कुछ भी नहीं था इसके पहले। वाह मुग्धा, मुझे पता है मैं ग्रेट हूँ। चलो आगे बढ़ो।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: हे, आई एम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड्स अप अनाउंसमेंट है, अगर आप सिंगापुर में सिंगटेल के यूजर हैं तो रविवार संडे यानी May 10th को ठीक दोपहर 12 बजे अपने फोन पे कोई अजीब आवाज अगर आ रही हो तो सुन के घबराने का नहीं। यस, इसलिए तो मैं बताने आई हूँ। सिंगापुर की होम टीम और सिंगटेल एक पब्लिक टेस्ट कर रहे हैं SG अलर्ट सिस्टम को चेक करने के लिए। आपके फोन पर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आएगा विद अ वेरी लाउड सायरन साउंड। इट्स जस्ट टू चेक करने के लिए कि सिस्टम इमरजेंसी में ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी कुछ वक्त पहले ना मेरे इंडिया से भी फ्रेंड्स ने बताए थे कि वहां पे ऐसे कुछ चेक हुआ था सडनली एंड काफी सक्सेसफुल रहा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है आज के वक्त में, तो आप भी घबराइएगा नहीं। आपको एक बहुत कमाल की बात बताऊं? हाँ, वो वहीं से आई है जहां से हर बार आती है मेरी कैप्सूल दिमाग में जी। ये नोटिफिकेशन कोई नॉर्मल SMS नहीं होते, इन्हें सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसका फायदा जो है ना वो ये है कि ये नेटवर्क कंजेशन में फंसते नहीं है, यानी अगर पूरा शहर एक साथ फोन इस्तेमाल कर रहा हो तो भी ये अलर्ट जो है हर फोन तक मिली सेकेंड्स में पहुंच जाएंगे विदाउट एनी कंजेशन। तो संडे को अलार्म बजे तो पैनिक नहीं करने।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d

सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टॉप एवरीथिंग, क्योंकि बॉलीवुड की क्वीन वापस आ रही है। अरे नहीं, मैं नहीं, मैं तो बॉलीवुड का आर लेकर के आई हूँ, आवर आर। हाई, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। द क्वीन इज बैक। जी, एक ऐसी कहानी लेकर वापस आ रही हूँ जो आपको रुलाएगी भी और गर्व भी महसूस करवाएगी। बॉलीवुड आर में इस वक्त मैं बात करने वाली हूँ किसकी? क्वीन की। मैं मुग्धा हूँ। कंगना जो है, कंगना रनौत, अपनी अगली बड़ी फिल्म भारत भाग्य विधाता अनाउंस कर रही है, कर चुकी है इनफैक्ट। और इस बार वो कोई रानी या कोई पॉलिटिशियन नहीं बनी है, बल्कि एक बहुत ही हम्बल नर्स का रोल प्ले कर रही है। एंड सबसे बड़ी बात, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित एक फिल्म है। अब क्या है ना, मेरे पास एक फैक्ट चेक है। पता है, फिल्म का टाइटल इंडिया के नेशनल एंथम से लिया गया है, और ठीक है वो बात तो अपनी जगह, लेकिन इसका फोकस जो है वो उन अनसंग हीरोज पर है जो कि व्हाइट कोट्स में है, दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रियल लाइफ नर्सेस की स्ट्रगल्स को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो काफी इंटेंस होने वाला है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। आप सुन रहे मस्ती हैंग आउट पर मुग्धा को। एम कैलेंडर्स तो देखो दोस्तों, उधर पीछे तो देखो, पीछे पीछे संडे 10th ऑफ मई को मदर्स डे है। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मॉम डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन ऑलवेज। देखो क्वीन क्वीन ही चल रहा है, उधर ऊपर भी क्वीन थी कंगना, अभी भी वापस क्वीन। सो बेसिकली हमारी शाही महारानी जो है ना, हमारा

ये मीठा उफ, वो मक्की दाल उफ उफ उफ उफ उफ करते रह जाएंगे. एंड देयर्स अ फिनाले विद लाइक मजेदार सी चीज, पता है क्या, लाइव जलेबीज और कुल्फी भी है. पर इन सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है, पूछो क्या, ये बहुत ही स्वीट बात है. एवरी मदर गेट्स अ वेरी हार्ट फेल्ट गिफ्ट, अ जार ऑफ होममेड गुलाब जामुन एंड सेवरी नमक पारे प्लस अ फोटो कार्ड. लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है. कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स आर अवेलेबल टू टू पर टेबल, ये ध्यान में रख के जाना. प्राइस $62 पर अडल्ट एंड $42 प्लस पर चाइल्ड 7 से 12 साल. ठीक है, 7 साल से छोटे बच्चे जो है, दे कैन गो फॉर फ्री. shahimaharani.com पे जाइए या फिर 6235-8840 पर आप कॉल करके अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं. तो ये तो हुई शाही महारानी के मदर्स डे की बात, लेकिन कुछ सवाल कुछ जवाब ऐसे हैं जिनका अगर आपने मुझे सवाल जवाब का जवाब सही सही दे दिया तो आपके लिए मेरे पास एक फूड वाउचर है. अब इस फूड वाउचर की जीत को जीतने के लिए आपको क्या करना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है, कैसे देना है, ये मैं आपको बताऊंगी एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद. तो जरा वापस आइए, और अगर आप भी जीतना चाहते हैं शाही महारानी का एक अमेजिंग फूड वाउचर तो फॉलो मी.

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with the majestic Mother's

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me,

0: आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, यू नो व्हाट, कभी कभी ना मूड ठीक करने के लिए बस एक चीज काफी होती है,
2: अच्छा खाना, गुड फूड।
1: मेरे लिए तो बस यही काफी है, और अगर फूड रॉयल हो और रॉयल अंदाज में दिया गया तो आई बात ही अलग है। इसीलिए ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब एक्साइटिंग क्या है। शाही महारानी का एक्सक्लूसिव फूड वाउचर गिव अवे जो मैं दे रही हूँ। कैसे? ऐसे, आपको एक सवाल का एक ही जवाब देना है, पर सही जवाब देना है। सवाल ध्यान से सुनिए, शाही महारानी के मेन्यू में इनमें से क्या आपको मिलेगा? यू हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए पानी पूरी, ऑप्शन बी चॉकलेट बिरयानी विद आइसक्रीम, ऑप्शन सी बबल गम बटर चिकन एंड ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी गार्लिक सूप। वापस बताऊं, ऑप्शन ए पानी पूरी, ऑप्शन बी चॉकलेट बिरयानी आइसक्रीम, ऑप्शन सी बबल गम बटर चिकन एंड ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी गार्लिक सूप। इनमें से क्या है जो शाही महारानी में आपको सर्व होगा, मिलेगा? आई नो आंसर बहुत ही डिफिकल्ट है, बट देखो मैं हर चीज को इतना आसान तो नहीं बना सकती। आप मुझे आंसर देने की कोशिश जरूर करिए, सही जवाब मुझे भेजिए 9151896 पर। जस्ट गिव अ ट्राई, क्या पता आपका तुक्का सही बैठ जाए, है ना? और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग फूड वाउचर अमेजिंग शाही महारानी की तरफ से, जो आपके लिए एक रॉयल बुफे डिनर लंच सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? और हाँ, भूलना नहीं, हमारे लिसनर्स के लिए सेलिब्रेशन तो रॉयल है ही, अरेंजमेंट जो कि आ रहा है मदर्स डे पर, एक्सटेंडेड लंच बुफे विद एन अमेजिंग एलिगेंट डिनर, उफ, विद अमेजिंग गिफ्ट्स, उफ उफ उफ, हाय। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: अभी हमने इतनी रॉयल बातें करी हैं, तो आइए इस बॉलीवुड आर को थोड़ा और रॉयल बनाते हैं। बात करते हैं द रॉयल नेक्स्ट टू रॉयल कपूर फैमिली की, जो इतनी बड़ी है कि वो रॉयल ही लगती है, खानदान सॉर्ट ऑफ। जैसे हम कपूर बात का नाम सुनते हैं, रणबीर, करीना, ऐसे नाम आ जाते हैं ना, पर आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट ऑफ ब्लूज, एक ऐसा डेब्यू हो रहा है जो किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। एंड शी इज रिद्धिमा कपूर। जी, पता ये लगा है कि रिद्धिमा कपूर खानदान की सबसे लेट डेब्यूटेंट बनने जा रही हैं। वो नजर आएंगी कपिल शर्मा की मूवी दादी की शादी में। एंड द फन पार्ट, पता है क्या, वो अकेली नहीं है इस फिल्म में, उनके साथ ऑफ कोर्स नीतू कपूर है, तभी तो ये पूरा कपूर खानदान स्पॉट हुआ था ऑन द स्क्रीनिंग स्पेशल वाली, है ना। और बेटी समारा भी है, समारा को तो मुझे देखना ऑन स्क्रीन, भाई साहब वो जो देते हैं ना एटीट्यूड, मजा आ जाता है मुझे देख करके। ये तीन जनरेशन ऑन स्क्रीन। एक फिल्म और आई थी इफ यू रिमेम्बर, इसी कपूर के खानदान की, लेकिन वहां पे वो सारे मेल एक्टर्स थे, ऑल द थ्री जनरेशन इन वन मूवी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी मूवी थी कपूर जनरेशन के लाडले इन वन मूवी? सोचो। फिलहाल फैशन डिजाइनर से एक्टिंग तक का जो ये सफर था, वो देखना होगा कितना इंटरेस्टिंग है और कितना अमेजिंग है। क्या रिद्धिमा भी वाकई कपूर की तरह स्क्रीन पर आग लगाएंगी, या इट वाज जस्ट लाइक चलो ठीक है कर लेते हैं जैसी चीज, अब वो तो रिद्धिमा ही बताएंगी, है ना। समारा हुआ अगर चस्का लग गया, कहते ना शेर के मुंह में खून लग गया, अगर एक्टिंग का चस्का लग गया, तो फिर तो उनको कोई खींच के वापस ला नहीं सकता। समारा उस किस्म की है नहीं, मुझे इतना देखा है मैंने उनको। Well, आगे बढ़ते हैं, stay tuned.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ओ माय गॉश, हाय, फाइनल आवर में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ एंड दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट आवर ऑफ द शो। मैं इसको ऑफिशियली OMGR कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी राइड्स पर जाते हैं ना कि ये कहानियां सुनकर आप ही का दिमाग घूम जाए और बताते वक्त मेरा घूम जाता है। हम सब कहते हैं ना कि सुननी चाहिए अपने दिमाग की, तो अमेरिका की एक लेडी ने ना अपनी गट फीलिंग की सुनी। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, दिमाग का भी जाता है। सो गट फीलिंग की उन्होंने सुनी और वो रातों रात करोड़पति बन गई। उन्होंने गलती से गलत लॉटरी का टिकट खरीद लिया, पर उनके मन ने कहा मत बदलो, मत बदल, मत बदल, मत बदल। लगता है पेट भरा था, तभी तो दिल ने ऐसी बात कही, और जब दिल ने कही तो दिमाग ने सुन ली। मन कह रहा था मत बदलो, उन्होंने रख लिया वो टिकट। यू नो व्हाट, एक बहुत अमेजिंग और बात बताती हूँ। इस एक्सीडेंट टिकट ने उन्हें पूरे 17 करोड़ रुपए का जैकपॉट जितवाया है। यू नो साइंस इसको इंट्यूशन कहता है, जहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से भी ज्यादा तेज चलता है। किसी किसी का तो बहुत तेज चलता है। तो अगली बार अगर गलती हो जाए तो घबराओ मत, शायद आपके हाथ जैकपॉट लग चुका है और आपको पता भी नहीं।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: नाउ एज वी हैव ऑफिशियली

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। Welcome to yet another episode of your favorite show. Keh sakti hu clearly with the number of letters that we're getting and the responses. Dear Masti, Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai. आपको पता है आज का शो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मोर स्पेशल दैन अदर डेज। इतना भी कहना मतलब मेरे लिए मुश्किल नहीं हो रहा है इस टाइम पर, बिकॉज द काइंड ऑफ लेटर्स वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम श्योर दे विल टच अ कॉर्ड समवेयर इन योर हार्ट। यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि डियर मस्ती दिल से जो एक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में डिस्कस हुआ एक बार, कि यार इतने लेटर्स आते हैं, इतने व्हाट्सएप हो रहे होते हैं, इतने मैसेजेस हो रहे थे, लोग अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में कभी जॉब की टेंशन है, कभी घर में पेरेंट्स की टेंशन है, कभी कुछ पर्सनल हेल्थ इशू हो गया है, कभी शादी नहीं हो रही है अपनी या अपने घर में किसी की, यू नो थिंग्स लाइक दैट। एंड It gets us really thinking कि यार इन सब चीज़ों के बारे में हम वन ऑन वन तो ऑफकोर्स बात करते ही हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाए जहाँ पर दूसरा बोल नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, सिर्फ हमें सुन रहा है और फिर अपना जवाब ढूंढ रहा है हमारी बातों में, तो वेल वी हैव टू ओपन अ सेफ स्पेस, isn't it guys? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो खामोशी की वजह से होती है, तो खामोश ना रहे। यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर पहुँच गए हैं हम आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी ही बातें करने के लिए। आपकी कई बातें हम आज ही के शो में नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आर शो इज ऑब्वियसली ऑलवेज फुल एंड ओवरफ्लोइंग विद प्री डिसाइडेड टॉपिक्स एंड लेटर्स दैट वी हैव चोजन, बट आई प्रोमिस यू आप हमें लिखेंगे आपका लेटर आज के शो में ना सही, अगले शो में डेफिनेटली या उसके अगले में डेफिनेटली होगा, एंड वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। ऑलराइट, विद दैट लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, रेणुका विद यू अलोंग विद आरजे अंतरा एंड आरजे नुपुर, डियर मस्ती दिल से।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो,
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: नाचने का मन है मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा.
3: हाँ जी जी.
2: आधा kg मसूर दाल.
3: जी जी.
2: काजू किशमिश. ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं.
3: जी जी.
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर.
2: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com. ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी.
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
1: तो चलिए, टाइम है आज का वो पहला लेटर पढ़ने का जो हमें लिखा गया है यहाँ पर. एंड द रीजन आई पिक दिस लेटर फर्स्ट इज दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अ यंग टीनेजर. एंड यूजुअली ऐसा नहीं होता कि रेडियो मस्ती 24/7 पर हमारी टीम को टीनेजर्स के लेटर्स आए. सो वन, आई एम ट्रूली थैंकफुल दैट हम ना ही सिर्फ बड़े लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं बट बच्चे भी हमको सुन रहे हैं. ना ही सिर्फ सुन रहे हैं बट दे आर एक्चुअली फाइंडिंग अस एज पीपल दे कैन ट्रस्ट. सो थैंक यू फॉर दैट. डियर मस्ती, दिल से. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. डियर मस्ती, मैं 16 साल का हूं एंड आई ऑलवेज हियर माई मॉम ट्यून्ड इन टू रेडियो मस्ती 24/7 एंड आई हर्ड दिस एड ऑफ योर सेइंग डियर मस्ती दिल से इज अबाउट लेटर्स. सो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं. आई हैव अ सिचुएशन. इज इट ओके इफ आई शेयर विद यू? मेरे पेरेंट्स पहले बहुत नॉर्मल थे बट पास्ट फ्यू मंथ्स दे कीप आर्ग्यूइंग. छोटी छोटी बातों पर दे आर फाइटिंग और अब तो दे हैव स्टार्टेड स्लीपिंग इन सेपरेट रूम्स टू. घर का एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, चेंज हो गया है. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बट डर लगता है, या तो वो इग्नोर कर देंगे और दे विल से दिस इज बियॉन्ड योर एज बट इट अफेक्ट्स मी. आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट और हर वक्त ये टेंशन रहती है कि क्या सब ठीक होगा. शुड आई स्पीक विद देम और शुड आई जस्ट कीप क्वाइट? विल थिंग्स गेट बेटर? हे, यू नो व्हाट, आई लव टू थिंग्स अबाउट यू. वन, योर ऑनेस्टी ऑफ कोर्स, एंड सेकेंड दैट यू हैव actually attempted to write Hindi apart from just English. I know teenagers nowadays don't really enjoy writing Hindi as much or speaking as much, but thank you so much for doing that. You know what? Main yahan par chota sa break zarur lungi, musical break, lekin I'm going to be back with a response to your concern. And you have to stay tuned, all right? And yeah, smile, because I'm actually going to play a very pretty song from Rock On, and I'm sure wo aapko Hindi mein kuch कहेगा बट यू विल एंजॉय इट इन द रॉक ऑन स्टाइल. तो बस आपकी और हमारी बातें चलती रहे रेडियो मस्ती 24/7 पर. आई एम गोइंग टू बी बैक अबाउट दिस पेरेंट्स का टेंशन एंड व्हाट दिस यंग थिंग इज फीलिंग. ऑलराइट, डोंट गो एनीवेयर. दिस इज रेनुका विद यू, रेडियो मस्ती 24/7. डियर मस्ती, दिल से.

ऑलराइट, वेलकम बैक. जी हाँ, बढ़िया गाने और आप ही की बातों से बना ये वाला शो हमारा, विच इज एब्सोल्युटली अ हार्ट टू हार्ट शो. इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से, बिकॉज हम कहते हैं ना, समटाइम्स अ स्ट्रेंजर ऑन द रेडियो कैन अंडरस्टैंड यू बेटर देन मेनी पीपल अराउंड यू. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से. And of course, break se pehle, I had mentioned the details of a letter that has been written by a young teenager who's concerned about ghar mein kya chal raha hai, the parents and the growing distance. And it's a very normal thing. I wouldn't call it normal. I would say it's a very natural reaction. But at the same time, aajkal bahut common hota ja raha hai is tarah ka difference. And the children who are at home see a very different kind of marital life, don't they? Well, sabse pehle, I'm really glad you wrote this. Because jo you are feeling, right, wo bilkul normal hai. जब पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं, इट कैन फील रियली अनसेटलिंग, बिकॉज घर में जो एक सेफ स्पेस होती है ना, सडनली इट स्टार्ट्स फीलिंग वेरी टेंस. बट एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सिचुएशन इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, सो यू गॉट टू स्टॉप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और इवन ब्लेमिंग योर सेल्फ. कभी अगर आपकी वजह से आपको ऐसा लगा भी हो, और ना ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व इट. ओके, लिव योर चाइल्डहुड, इन्जॉय योर चाइल्डहुड रियली, बिकॉज कभी कभी एडल्ट जो होते हैं ना, उनके अपने ही इशूज होते हैं जो वो अपने लेवल पर डील करते हैं. और हाँ, वो डिफिकल्ट होता है देखना, बट इट डजेंट मीन दैट एवरीथिंग इज ब्रेकिंग. इफ यू आर कंफर्टेबल, देन फील करो दैट यू कैन टॉक टू वन पेरेंट कामली एंड सिंपली. यूज फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस विच सेज, थिंग्स फील डिफरेंट एट होम एंड इट्स अफेक्टिंग मी. And parents really care for their children. ये बात हर जगह, हर culture, हर community में definitely valid है. और पता है क्या, sometimes ना parents realize ही नहीं करते कि उनके arguments के impact बच्चों पर कितने होते हैं. और बच्चों के सामने ना भी करें, but the tense situation at home actually is very visible. और अगर directly आप बात करना आपको मुश्किल लगता है, then किसी trusted adult से बात करो, teacher से, relative. I would not recommend that heavily because you don't know all the equations there. But the best is to talk to one of your parents. Aur ek baat yaad rakhna, even if things feel uncertain right now, it doesn't mean they won't get better. Okay? Take care of yourself too, because aapki feelings bhi utni hi important hain. Don't get so stressed. And as I said, live your childhood. It's something you get only once. Never comes back. Take care.

0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh Mehra.
2: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
3: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
2: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pa. And a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffle City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
4: Dear Masti, Dil Se. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
2: वेलकम टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, और मैं हूँ इस वक्त आरजे अंतरा, यानी कि आपकी अंतरा यहाँ पर आपके साथ। जो हम लोग शुरू कर चुके हैं और जुड़ चुके हैं हमारे इन लेटर्स के इस खूबसूरत से जर्नी के साथ, एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर सिंसियरली स्पीकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि हमें ये लेटर्स पढ़ने का जो है मौका मिलता है। और कई बार पढ़ते पढ़ते हम खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये हमारे साथ होता तो हम सच में क्या करते। बस इसीलिए मस्ती मीडिया नेटवर्क पर हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा सेफ स्पेस बनाया जाए जहाँ पर आप अपनी बात कह सकें, पूछ सकें, शेयर कर सकें। और हाँ, अगर कभी आपको किसी लेटर को सुन के ऐसा लगे दर आई वॉन्ट टू सी समथिंग अबाउट दिस, तो 9151863 पर आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लेटर की तरफ। तो लेटर कुछ ऐसा कहता है, डियर मस्ती, हाल ही में घर पे बड़ा सा झगड़ा हुआ। मम्मी पापा ने कहा एक रिलेटिव के यहाँ पे जाना है, मैंने मना कर दिया। डांट पड़ी कि रिश्तेदारों से बना के नहीं रखोगे तो अकेले रह जाओगे, पर मैंने उन्हीं रिलेटिव्स की वजह से अपने पेरेंट्स को हर्ट होते हुए देखा है। तो फिर क्यों ये सब, समझ नहीं आता बोलूं या चुप रहूं। वाओ, ओके, लेट मी टेक अ 1 सेकेंड पॉज। ओके माय डियर लिसनर, मुझे तो लगता है आपकी फीलिंग जो है ना वो बिल्कुल वैलिड है। एंड ऑनेस्टली, क्या हम सब ने कभी ये देखा नहीं है, रिश्तेदारों वाला कंफ्यूजन जो है सभी ने कभी ना कभी इसको फेस किया है। बना के रखे या सीधा मुंह पे बोल दें, क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। और चुप रहना भी आसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि फिर लोग आपको गलत समझने लगते हैं। सच में क्या करें। Let me give this a little thought, okay? चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और वापस आके मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। Definitely, ये एक जिंदगी काफी नहीं है रिश्तेदारों से डील करने के लिए। Stay tuned to Dear Masti Dil Se, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक डियर मस्ती दिल से पर आप सुन रहे हैं अंतरा को ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। तो कुछ देर पहले हमने एक बड़ा ही रिलेटेबल सा रिलेटिव्स को लेकर लेटर पढ़ा, जहां पर एक लिसनर ने हमारे शेयर किया कि घर पे काफी सारा जो है झगड़ा हो गया है, रिश्तेदार के यहाँ पे जाना था पर मन नहीं था। और फिर वही क्लासिक लाइन आई पेरेंट्स से कि ऐसा नहीं बना के रखोगे तो अकेले रह जाओगे, जबकि इन्होंने देखा हुआ है कि इन्हीं रिश्तेदारों की वजह से जो है इनके पेरेंट्स काफी बार हर्ट हुए हैं। सच कहूं मैं सीधा अपनी लाइफ का एक सिचुएशन जो है इसी को पढ़ते पढ़ते पहुंच गई। यू नो मी राइट, अ लॉट ऑफ पीपल नो मी प्रीटी वेल। मैं थोड़ी सी रिबेलियस टाइप की, थोड़ी सी कभी मुंहफट टाइप की, फैमिली की थोड़ी सी वो जो अलग सी डकलिंग होती है ना, वो मैं हूँ। तो मैं काफी बार सॉफ्ट टारगेट रही हूँ। एक्चुअली मुझसे भी ज्यादा मेरे पेरेंट्स इस बात के टारगेट रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा है, इसका तो ऐसा है। पहले मुझे भी ना बहुत गुस्सा आता था, मैं बहुत लड़ भी लेती थी, एक्सप्लेन भी बहुत ज्यादा करती थी। बट द ओल्डर आई गॉट द मोर आई रियलाइज दैट मुझे ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और ये स्ट्रेस की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। और धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन करना काफी कम कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया दैट माई एक्सप्लेनेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। जी हाँ, वर्ड्स आर लाइक इन्वेस्टमेंट्स। आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के करते हो, राइट? तो फिर मैंने अपने टाइम, एनर्जी और वर्ड्स को भी उसी तरह से इन्वेस्ट करना शुरू किया। दिस इज योर लाइफ और इसमें हर जगह इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं होता है, स्पेशली जहाँ पे रिटर्न में आपके पास स्ट्रेस के अलावा कुछ और नहीं आ रहा हो। सो आई चोज पीस ओवर बींग लाइक डूइंग एनीथिंग एल्स। अब ये तरीका आपको सही लगे या नहीं वो आपकी चॉइस है, बट एक बात पक्की है, जब आप बाउंड्री सेट कर देते हो ना तो धीरे धीरे ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि पेरेंट्स भी समझने लगते हैं कि कुछ चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, एंड दैट्स ओके। और ये मैं उन पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहती हूँ जो अभी इस वक्त अगर आप लोग ट्यून्ड इन हैं, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी आपने ये बात अपने बच्चे से बोली होगी, शायद इस बात पे उसको डांटा भी होगा, पर टाइम के साथ हर किसी को ना इवॉल्व करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसी चीज से दूर रहना चाहता है जो उसे अच्छा फील नहीं कराती है तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आज की डेट में मैं और मेरी मॉम की अगर आप मैं बताऊं लाइफ देखें, हम दोनों के सोशल सर्कल्स बिल्कुल अलग है और हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि तू तेरे जैसी है, मैं मेरे जैसी हूँ, और हम दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने तरीके से काफी खुश है। कोई किसी को फोर्स नहीं करता सिर्फ इसलिए क्योंकि चार रिश्तेदार ऐसा चाहते हैं। होप दिस हेल्प्स। आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

कई बार ऐसा होता है जो हम देखते हैं वही सच मान लेते हैं और शायद उसी कैरेक्टर में ढलने लग जाते हैं। आपको नहीं लगता आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा असर आजकल की फिल्मों का पड़ रहा है? सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर एंड डेफिनेटली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर हर ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स डियर मस्ती दिल से शो पर आपके लेटर्स यहाँ हम पढ़ते हैं। उनमें क्या सवाल छिपे हैं और क्या जवाब हो सकते हैं, इन पर बातचीत करते हैं। भाई आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ चाहे जितनी भी फिल्मी हो जाए, थोड़ा जमीन पर पांव रखिए, क्योंकि आखिर वहीं जाकर सारे रिश्तों का असली मतलब समझ आता है। एनीवेज आगे बढ़ते बढ़ते मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें क्या लिखा है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। सो लेटर में लिखा है कि मुझे मेरे पार्टनर को किसी के साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलिसी फील हो जाती है। हमेशा मन में गलत थॉट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं करती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिससे भी वो बात कर रहा है शायद सामने वाले के मन में कुछ गलत ख्याल है, और ऐसा करके मैं इनसिक्योर फील करती हूँ और एट द एंड हम दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और इस बात को कंटिन्यूसली मैं पिछले 2 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा वक्त चला तो शायद मेरी जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगी। सो जिन्होंने ये लेटर मुझे भेजा है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे विश्वास होता है वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, आपके जेलिसी जैसे शब्द का क्या हो सकता है सल्यूशन, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। टिल देन आपको खुश करने के

ये पुराने वो खूबसूरत गाने हैं जो आपको बता रहे हैं कि प्यार सच में बहुत खूबसूरत था, है और रहेगा। चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी है मेरे यानी आरजे नुपुर और बाकी सभी आरजे के साथ डियर मस्ती दिल से शो पर। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर, वी ब्रिंग देम बैक। Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: You know what? आप ना चींटी जैसी प्रॉब्लम को जितना ज्यादा दाना दोगे ना, वो आगे जाकर पहाड़ जैसी दिक्कत बन जाएगी। बिल्कुल, मैं आरजे नुपुर आज के इस खूबसूरत दिन में और इस खूबसूरत शो पर जिसका नाम है डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। एंड यहाँ पे हम ना खाली हाथ नहीं आते हैं, हमारे हाथों में होते हैं आपके सवाल, आपके जज्बात, यानी आपके लेटर्स। सो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने, यानी आरजे नुपुर ने, एक लेटर पढ़ा था जिसमें लिखा है कि मुझे मेरे पार्टनर को किसी के साथ भी देख कर जेलसी फील हो जाती है। मेरे मन में गलत गलत थॉट्स आते हैं, अपने पार्टनर को लेकर नहीं बल्कि सामने वाले के मन में कुछ गलत चल रहा है। मुझे इनसिक्योरिटी फील होने लगती है और पिछले 2 साल से ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है और हमारी कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है, तो हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप ना बन जाए तो क्या करना चाहिए? तो भाई, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, तो सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा फिल्टर है कि आप ना फालतू फालतू मूवीज देखना बंद करो, कंटेंट जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो OTT पर या एनी हाउ डेली सोप्स में, आप ये सब बंद कर दो यार। बिकॉज कई बार होता है कि हम इतना ज़्यादा ऐसी रील्स फीड में आ जाती है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मूवीज हम देख लेते हैं कि हम उन फिल्मी किस्सों को रियल किस्सों में कन्वर्ट करके अपने आस पास एक फ्रेम बना लेते हैं। और देखिए, जब आपके पार्टनर या आप खुद घर से बाहर निकलते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अकेले पूरी दुनिया के साथ जो है ना, वो ऐसे ही एक तरफा रिश्ता निभा लो। दोस्ती होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, आप किसी को अपना सिबलिंग मानते हो, आप किसी को जस्ट फ्रेंड मानते हो, आप किसी को सिर्फ कलीग मानते हो, तो ये सारे रिश्ते अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेप्स पे हमें निभाने पड़ जाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर पर सच में 100% यकीन रखोगे या रखोगी ना, तभी जाकर ये सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक बार ये चांस देकर देखो कि आप उन पर 0% शक करो और 100% विश्वास रखो। अगर सच में एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल कर आ रहा है, आपके मन में जरा भी गिले शिकवे नहीं आ रहे हैं, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जरा जरा करके इस गाने में डूब जाते हैं।
5: जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन।
4: बिल्कुल, ऐसे खूबसूरत गाने कर रहे हैं आपका इंतजार, रोमांस से लेकर रोमांच तक। डोंट गो एनीवेयर, डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर. मेरी बारी, और मेरी बारी में हमेशा इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे लगता है वेरी हैवी.
1: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती.

0: से। रेडियो मस्ती 24/7 पर मेरा जो ये अगला लेटर है ना, इट्स नॉट लाउड बट इट्स रियली हैवी। हाय रेणुका, मैं ये लेटर लिख रही हूँ बिकॉज आई फील स्टक। मेरे अपने ही फैमिली मेंबर्स बार बार झूठ बोलते हैं, कभी छोटी बातों पर कभी बड़ी बातों पर, और सबसे मुश्किल बात ये है कि मुझे सच पता होता है। हर बार जब ऐसा होता है, इट फील्स लाइक किसी ने अंदर से चोट दी हो, जैसे ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा हो, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर पाती। कुछ रीजंस हैं, फैमिली डायनामिक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर मैं स्ट्रांगली स्टैंड ले लूं तो सिचुएशन अगली हो सकती है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। तो मैं चुप रह जाती हूँ, नॉर्मल बिहेव करती हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बट अंदर से इट फील्स लाइक आई एम बीइंग स्टैब्ड अगेन एंड अगेन। और फिर गिल्ट भी होता है, क्या मैं वीक हूँ, क्या मैं बस टॉलरेट कर रही हूँ, या फिर ये मैच्योरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइज, आई डू वांट टू से वन थिंग, हैवी है लेटर, इसके पीछे आप वो सारी बातें एग्जाम्पल्स मुझे दे भी नहीं सकती हैं, मैं जानती हूँ, बट आई कैन इमेजिन व्हाट यू फीलिंग, बिकॉज हर किसी की फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई किस्सा होता है जहाँ लगता है कि यार ये फिर मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े हो गए सबके सब, राइट? नेवर माइंड, वी गोना टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ लिटल बिट। आप यहीं हमारे साथ रहें बिकॉज आई एम गोइंग टू रिलैक्स यू विद अ कपल ऑफ थिंग्स दैट वी गोना प्ले, एंड देन आफ्टर दैट बिल्कुल आप ही पर पूरा का पूरा हमारा ध्यान होगा और आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, रेणुका विद यू, डियर मस्ती दिल से।
1: दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो सिद्धा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो सिद्धा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चलो।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है। सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेले है। जोश में रहो।
2: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
3: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
2: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffle City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.

And on Radio Masti, guys, it is time for us to move on with the response to a very, very interesting and a very common situation. जी हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हम और आप बात कर रहे थे. Welcome back. This is Dear Masti, दिल से. Dear Masti, दिल से. Because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. About lying and betrayal within the family. I'm sure हमारे बहुत सारे listeners कहेंगे यार ये बातें तो हमें भी interest दे रही हैं, क्योंकि हाँ ये हमारे लिए भी कोई नई बात नहीं है. राइट, सो भाई आसपास जो कुछ भी है आपकी फैमिली में, जो भी डायनामिक्स हैं उसके बारे में, you know, मैं यही कहूँगी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ राइट और ईजी दोनों अलग होता है, और आप अभी शायद उसी जगह पर हो. सबसे पहले जो आप फील कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली वैलिड. बिट्रेयल स्पेशली जब फैमिली से आए तो वो ज़्यादा डीपली हर्ट करता है, बिकॉज वहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना ट्रस्ट की, ऑनेस्टी की, प्यार की. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, हर बार रिएक्ट करना ही स्ट्रेंथ नहीं होती, और हर बार चुप रहना वीकनेस नहीं होती. कब रिएक्ट करना है, चूज़ योर बैटल्स वाइजली एज आई ऑलवेज से, और कब अपनी एनर्जी बचानी है, ये भी एक तरह की मैच्योरिटी है, बिलीव मी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर ही अंदर हर्ट कलेक्ट करते रहो और अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, खून जलाते रहो, बिकॉज वो धीरे धीरे आपको और आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा. तो शायद सोल्यूशन ये नहीं है कि या तो आप सब कुछ इग्नोर करो या फिर एक बड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन करो, बिकॉज इट्स अबाउट स्मॉल बाउंड्रीज. जैसे हर चीज़ में इन्वॉल्व ना होना, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना, हर बात को पर्सनली ना लेना, और इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लो, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दो. अगर कभी सेफ लगे तो कामली बिना ब्लेम के एक एक सिचुएशन पर बात करना, अगर सेफ लगे तो. नॉट टू फाइट बट टू एक्सप्रेस, एंड नॉट टू बी मेड फन ऑफ विद योर इमोशंस एज वेल. सबसे इंपॉर्टेंट, आप वीक नहीं हो, दैट्स द इंपॉर्टेंट बिट, क्योंकि आप चूज कर रहे हो कि आप एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल करो जहां इमोशंस भी हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. कभी कभी ना रिश्तों को तोड़ना सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन खुद को तोड़ते रहना भी सोल्यूशन होता है. मतलब आप सोचो कि किस तरह से यू फाइंड द बैलेंस जहां आप अपनी पीस प्रोटेक्ट कर पाओ. ये गाना ऑफकोर्स जो अगला है वो स्ट्रांग भी है, सेंसिटिव भी है, और आपको इतना भी कहेगा कि यार मूव ऑन, हर चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते. कमिंग अप रेडियो मस्ती 24/7 पर.

0: ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां पे काफी दिल से बातें हो रही है हम सभी के साथ, आप सभी की। मैं हूं आपकी अंतरा फिलहाल यहां पर आपके साथ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ बोलने का सोचा हो, बार बार वो बात मन में आई हो, बोल दूं नहीं बोलूं, लेकिन साथ ही साथ में इतने सारे सवाल भी आते हैं कि सही रहेगा, क्या ये समझ पाएंगे, कहीं ये गलत तो समझ नहीं लेंगे। आई नो, और शायद इसीलिए मुझे लगा कि ये सवाल कितना ज्यादा कॉमन है कि मैं आपसे, यानी कि हमारी प्यारी प्यारी लिसनर्स से जो इस वक्त ट्यून्ड इन है, आपसे एक सवाल पूछूं। दैट व्हाट्स दैट वन थिंग यू हैव नेवर टोल्ड एनीवन बट यू ऑलवेज वांटेड टू। और जरूरी नहीं है कि ये कोई मतलब लव कन्फेशन हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप किसी को अच्छी जो है सलाह देना चाहते हो, पर फिर लगता है कि क्या जरूरत है, छोड़ दो, है ना। या फिर आपको लगता है कि आपके ना बोलने की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यू वांट टू से इट बट फिर वही थॉट आता है ना कि व्हाट्स द पॉइंट, और फिर वो बात बस अंदर ही रह जाती है। तो सवाल सिंपल है पर थोड़ा सा डीप भी है एट द सेम टाइम। क्या है वो बात जो आप किसी को कहना चाहते हो पर कभी कह नहीं पाए? देखिए, मुझे किसी का नाम नहीं जानना, नाम लेना जरूरी भी नहीं है। आप बस सिचुएशन बता सकते हो या फिर ऐसा कुछ लिख दो कि दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू से। 9151896 पर हमें लिखकर बताएं। और हाँ, कभी कभी ये बातें सिंपल भी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ये बोलना कि यू नो देयर इज दिस रियली गुड डिओड्रेंट इन द मार्केट, हैव यू एवर ट्राइड दैट। आई नो हंसी आ रही है बट सच में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स भी कितने ऑकवर्ड से हो जाते हैं ना। तो चाहे बात छोटी हो या बड़ी, हम सुनने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। मैं तब तक आपके लिए कुछ अच्छा जो है अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर प्ले करती हूँ। आप सोचिए, फील कीजिए और हमें लिख भेजिए ऑन डियर मस्ती दिल से ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। स्टे ट्यून्ड।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सुना ही होगा आपने ये गाना। वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से, मैं हूँ आपकी अंतरा यहाँ पर आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और सीधा चलते हैं हमारे अगले लेटर की ओर, क्योंकि वो और मैं दोनों तैयार हैं। लेटर कुछ ऐसा कहता है दैट डियर मस्ती, मुझे कभी कभी लगता है कि प्रॉब्लम मुझ में ही है, किसी एक चीज में मन ही नहीं लगता। कुछ शुरू करती हूँ पर बीच में छोड़ देती हूँ, स्टार्ट होता है पर कंप्लीट क्यों नहीं कर पाती। कंफ्यूज थी इसीलिए लिख दिया। आई लाइक द वे धीरे धीरे हम यहाँ पे रियलाइज कर रहे हैं कि जब आप किसी से कनेक्ट करने लगते हो ना, तो आपके बात करने का जो वे है वो भी धीरे धीरे बदलने सा लगता है। आई फील नाइस एंड कंफर्टेबल। ओके डियर लिसनर, मैंने सिर्फ आपके राइटिंग स्टाइल से ये मैं गेस कर रही हूँ कि या तो आप प्रिटी यंग हो या फिर यंग एट हार्ट हो फॉर श्योर। बट एक बात बताऊं, कंफ्यूजन होना ना बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए कभी कभी 10 रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। आप जब ट्राई ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। मेक सेंस? लाइफ कोई मैनुअल के साथ थोड़ी ना आता है, राइट? कि सब कुछ ऑलरेडी फिगर्ड आउट हो रखा हुआ है। मुझे लगता है दो चीजें होती हैं। जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो या तो आपकी विलिंगनेस होती है उस चीज को वापस से यू नो जस्ट टू गेट बैक टू इट अगेन, या मोटिवेशन होता है टू कंटिन्यू, राइट? और कई बार एंड तक इसीलिए नहीं पहुंचते क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और वो भी ओके है। नाउ कुछ लोग होते हैं जो ऐसा है कि शुरू तो करते हैं और उसे किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना चाहते हैं, उनका मिशन बन जाता है लाइफ का। और कुछ लोग डिटोर्स लेते हुए जाते हैं अपनी मंजिल तक, वो भी पहुंचते हैं, कभी एक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं फिर भी राइट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। टाइम अलग लगता है दैट्स फॉर श्योर, पर क्लैरिटी ना सबको मिलती है दोस्त। इसीलिए प्लीज अपने आप को ये मत बोलो कि मुझ में ही प्रॉब्लम है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि आपके वर्ड्स जो आप खुद से बोलते हो ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। आपका माइंड, हार्ट, बॉडी, एवरीथिंग इज लिसनिंग टू इट। जैसे आपने डियर मस्ती दिल से जो है आपने सुनना शुरू किया, अब आपका मन करता है कि हर बार ट्यून इन करो, क्योंकि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना? देखा? या तो नो कंफ्यूजन। तो लाइफ में भी ट्राई करते रहना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मिस्टेक्स टोटली ओके, trying multiple things absolutely okay, but self bashing no, that's not okay. बस एक चीज याद रखिए, हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। I hope this helps. आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। बने रहिए हमारे साथ।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.
5: Dear Masti, Dil Se. You know what, ऐसा होता है कि हमारे अंदर का बचपना हम इतना जिंदा रखते हैं कि वो धीरे धीरे दिक्कतें पैदा कर देता है। गलती आपकी नहीं है, गलती आपके पेरेंट्स की पैम्परिंग की है। सो हेलो हाय, मैं आरजे नूपुर, डेफिनेटली डियर मस्ती दिल से शो पर आपके जज्बात और मेरे जवाब का कॉम्बिनेशन लेकर आ चुकी है। बिल्कुल, हम सभी आरजेज आपके भेजे हुए खतों को पढ़ रहे हैं और उसमें आपकी लाइफ में क्या हलचल चल रही है ये जानकर हमें मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि आप अनजान ही सही किसी से अपने मन का बोझ हल्का तो करना चाह रहे हैं बांटकर। हाँ, तो चलिए ऑन दिस थॉट मेरे हाथों में जो अगला लेटर आ चुका है उसमें क्या लिखा है आपको बताती हूँ। जिन्होंने ये लेटर भेजा है उन्होंने ये बताया है कि मुझे कोई भी थोड़ा सा, वो चाहे घर हो या मेरा ऑफिस हो या फिर मेरा फ्रेंड ग्रुप हो, मुझे कोई भी कुछ हल्का सा भी नेगेटिव बोलता है तो मुझे बुरा लग जाता है। मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ और मैं शायद सामने वाले शख्स से बात करना भी छोड़ देती हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं सोशल सर्कल के बीच मेरी एक इमेज बन चुकी है कि इसके संग मजाक मत किया करो, ये तो बहुत ही कच्चे दिल की लड़की है, तो मुझे अब ये बुरा लगने लगा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे बाबा, रे बाबा, मैं आपसे सच में ये पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने घर परिवार की पैम्पर्ड चाइल्ड रही है? क्या आप अपने घर वालों के बीच इतना सटल एनवायरनमेंट में रही है कि आप किसी का मजाक भी नहीं सह पाती है? हाँ, तो देखो, स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको ना। सबसे पहले अपने जो नोन लोग है ना, बिल्कुल सुपर नोन आपके अपने लोग जो है ना, उनके बीच बैठ के हंसी मजाक थोड़ा सा करना है, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन कैसे कर सकती हैं आप, चलिए जानेंगे थोड़ी सी देर में। बिल्कुल, मैं आरजे नूपुर आपके चेहरे की हंसी को बरकरार रखने के लिए ला रही

आपको पता है, जीवन की आधी जो लड़ाइयां है ना, वो चेहरे पर हंसी रखकर मिटाई जा सकती है, रोकी जा सकती है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही थोड़ी ना घर के बुजुर्गों ने बोला है कि बातें एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। हाँ जी, मैं आज पर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। और अगर लाइफ में खुश रहना है ना, तो आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अभी जो थोड़ी देर पहले मेरे हाथों में लेटर आया, उन्होंने मुझे पता है क्या लिख कर भेजा है कि मैं घर या बाहर जहाँ भी होती हूँ, मुझे कोई हल्का सा भी नेगेटिव बोल देता है या मेरा मजाक उड़ा देता है तो मुझे बुरा लग जाता है, और मैं इतनी जल्दी हर्ट हो जाती हूँ कि मेरे सोशल सर्कल में इमेज बन चुकी है कि भाई इससे मजाक मत किया करो, ये सह नहीं पाती है। देखो, सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने फ्रेंड्स प्यारे हैं कि नहीं प्यारे हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि आप अच्छे लोगों के बीच बैठ रही हो, कोई गलत इंसान तो नहीं है ना? हाँ, तो जब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप, दोस्ती की, पड़ोसी की, या फिर कैंडिड फ्रेंड्स की, या फिर कलीग्स की मेंटेन कर रहे हो, तो जब एक रिलेशनशिप का सफर शुरू होता है ना, तो वो बहुत ही फॉर्मल होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कैजुअल होता जाता है, फिर सामने वाले को एक ओनरशिप मिल जाती है एक तरीके से कि वो हल्का हल्का आपसे हंसी मजाक कर सकता है। और जब वो पहली दफा हंसी मजाक करे और आपको कोई बात बुरी लगे ना, तो आप पहली बार में ही उसे रोक दो, एक फुल स्टॉप मार्क लगा लो ब्लंट एटीट्यूड के साथ, तो शायद वो दोबारा वो हिम्मत नहीं करेगा। और उससे भी अच्छा तरीका पता है क्या है कि देखो, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये आप उनके हंसी मजाक से जान सकती हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ बातें सुननी है एक कान से और दूसरे कान से निकाल देनी है। आपको उनकी बातों का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो यार। तो जिस दिन आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे ना, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, और शायद आप उस सोशल सर्कल के स्ट्रांगेस्ट मेंबर निकल कर आओगे। ट्राई दैट, और सोल्यूशन ना निकले तो मैं यहाँ बैठी हूँ ना डियर मस्ती दिल से शो पर, जहाँ आएगा आपके

बिल्कुल छन्ना मेरे या मेरे या मेरे या, इमेजिन कीजिए इस गाने को और इमेजिन कीजिए अपनी लाइफ जर्नी को और इमेजिन कीजिए उन हेल्दी रिलेशनशिप को जिनको सोच कर भी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरजे नुपुर, डियर मस्ती, दिल से शो पर।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: And I'm back. It's time for Dear Masti Dil Se Renuka Ke Saath.
1: Dear Masti Dil Se.
0: This letter has actually upset me personally speaking, लेकिन ज़रूरी है कि इसके बारे में बात करें because this person has written to us, लेकिन ये जो problem है अगर कोई भी और face कर रहा है then it is extremely serious. Hi Renuka, मैं ये letter लिख रही हूँ because I feel confused and scared. मेरे school में एक teacher है जो कभी कभी students के साथ ऐसे behave करता है जो uncomfortable लगता है. कमेंट्स जो थोड़े अजीब लगते हैं और कभी कभी फिजिकल टच भी जो नॉर्मल नहीं लगता. मैंने ये सिर्फ अपने साथ नहीं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी नोटिस किया है. कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है और उस वक्त मैं फ्रीज हो जाती हूँ. मुझे समझ नहीं आता रिएक्ट कैसे करूँ. क्या मैं पेरेंट्स को बताऊँ या स्कूल के हेड को, पर डर लगता है. मैं नहीं चाहती कि ये सब कॉन्ट्रोवर्सी बन जाए या मेरे नाम इस सब में आए, लेकिन चुप रहना भी गलत लगता है. व्हाट शुड आई डू. And I want to take a few seconds here without a break. I do want to talk about this, all right? Talk to your kids, guys. Really talk to your children. Figure out what's happening to them in their lives in school. Don't think that school and colleges are safe space. 100%. But sabse pehle, thank you so much for writing. And I want to say very clearly, jo aap describe kar rahe ho na, wo bilkul normal nahi hai. और आपका अनकंफर्टेबल फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, वही सही है. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये सिचुएशन अकेले हैंडल नहीं करनी चाहिए. एंड आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट, वेरी डायरेक्ट, वेरी स्ट्रेट. मुझे पता है डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, बात बढ़ जाएगी, नाम आ जाएगा, अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी, यू नो. एंड लेकिन साइलेंस सिर्फ प्रॉब्लम को कंटिन्यू होने देता है, रिमेंबर दैट. आप किसी ट्रस्टेड एडल्ट से बात कर सकते हो. आपने हमसे बात करी है, यू हैवंट गिवन अ स्पेसिफिक्स, बट अपने पेरेंट्स, स्कूल काउंसलर या कोई टीचर जिनके साथ आप सेफ फील करते हो, प्लीज टॉक टू देम राइट अवे. अगर बोलना मुश्किल लगता है तो लिख कर शेयर करो. ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, ये सेफ्टी का इशू है. और आप सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए स्टैंड ले रहे हो जो शायद बोल नहीं पा रहे हैं. आपको स्ट्रॉन्ग फील करना जरूरी नहीं है इस मोमेंट में, बस आपको अकेला नहीं रहना है. हेल्प लेना वीकनेस नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दैट. और अगर आप कोई और भी सुन रहे हैं और आपके साथ जैसा कि मैंने कहा कुछ ऐसा हो रहा है, प्लीज टॉक टू समवन यू ट्रस्ट. आपकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलवेज. एंड ऑन रेडियो मस्ती, एज वी ऑलवेज से, डियर मस्ती दिल से इज अ सेफ स्पेस. इफ यू नीड आवर हेल्प, वी आर राइट हियर. इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक, वी आर राइट हियर टू सपोर्ट यू. सो टेल अस, शेयर विद अस.

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when GG Mart is there?
3: क्या जी?
4: GG Mart, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
5: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आप सुन रहे थे, अब बोलना चाहिए डियर मस्ती दिल से। मैं आपकी अंशरा वापस आ चुकी हूँ यहाँ पर आपके साथ, एंड वी हैव कम टू एन एंड ऑफ अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ दिस शो। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू, उन सभी लोगों को जो हमें यहाँ पर लिखते हैं, अपना टाइम निकाल कर लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात दैट आप अपना ट्रस्ट जो है वो हम पर रखते हैं, क्योंकि सच में इन सब बातों के बारे में बोलना जितना आसान लगता है ना, उतना होता नहीं है। काफी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो थैंक यू ट्रूली। और उन सब लोगों को भी जो हमें मैसेजेस भेजते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एंडियरिंग एंड सो वेरी रियल। सो थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस स्पेस। आज की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल रही। एक तरफ वो टीनेजर जो पेरेंट्स और रिश्तेदारों के बीच फंसा हुआ था, फिर नूपुर के लेटर में जेलसी की फीलिंग, और फिर वो सवाल कि मैं शुरू तो करती हूँ पर कंप्लीट क्यों नहीं कर पाती, क्या प्रॉब्लम ही मुझ में है। ये सब सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछे हुए हैं। लाइफ में ना हर रोज इतना कुछ हो रहा होता है, इतना कुछ हम हैंडल कर रहे होते हैं कि कभी कभी हम खुद ही को भूल जाते हैं। और शायद इसीलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी लाइफ में खुद को टॉप प्रायोरिटी बनाएं। एक चीज जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है वो यही ही है, अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो लोग आपको ऑप्शन बना देंगे। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, खुद को इम्पोर्टेंस देते हो और ये डिसाइड करते हो कि दैट आई एम हैप्पी एंड आई विल ऑलवेज बी हैप्पी, तो धीरे धीरे चीजें अपने आप प्लेस पर आने लगती हैं। बिकॉज व्हेन यू स्टे हैप्पी, आपके आसपास की दुनिया भी काफी बेटर फील होने लगती है। तो अगर आप खुद को काफी टाइम से क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं यार प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, बी काइंड टू योरसेल्फ, लाइफ एक ही है और दूर से देखो तो काफी लिमिटेड भी है। आज जो आप कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वो ही आपका कल बनाएगा। सो मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेजेंट, लिव इट, फील इट, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, खुद को प्यार यूं ही करते रहो। फिलहाल मैं अंतरा आपसे लेती हूँ इजाजत विद लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई होप यू ट्रूली एंजॉयड दिस शो। गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ अगले ट्यूसडे ऑफ डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला। और दिल

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसफर।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।
2: यास्क मुनि ने कहा है कि मंत्र के अर्थ से मंत्र की ध्वनि अधिक प्रभावकारी होती है। ध्वनि में भी यदि मंत्र का मूल बीज मंत्र हो तो उससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। जिस मंत्र में बीज और शब्द दोनों का यथाविधि प्रयोग किया गया है, अतः समस्त रिद्धि सिद्धि, धन संपदा, संतति प्राप्त करने के उपायों में इस मंत्र का जाप, श्रवण, मनन बड़ा उपयोगी माना जाता है।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: और इस काफी रेसिस्ट गाने के बाद ही हम यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं रेडियो मसी 24/7 पर। ये क्या है, चुरा के दिल तेरा गोरिया चली, अगर कोई काली होती तो उसके बारे में क्या कहता कवि।
1: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस कुछ भी, हम लोग ना कुछ किसी चीज का कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। लाइक इट इज जस्ट द मस्ती मैडनेस इफेक्ट विच वी हैव एवरी सिंगल फ्राइडे। हमें पता नहीं क्या क्या ही हो जाता है।
0: क्या ये खा कर आते हैं हम सुबह सुबह, मतलब ऑन रेडियो मस्ती 24/7। सही पहचाना आपने, मस्ती मैडनेस है। लेकिन भाई जहां भी कुछ गलत हो रहा होता है वहां पर मुझे आवाज उठाना अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि आप सोचिए, हाँ सोचिए, गोरी है कलाइयां, ठीक है, चिट्टियां कलाइयां, एंड साथ में चुरा के दिल तेरा गोरिया चली। व्हाई ऑल द सॉन्ग्स अराउंड गोरा, व्हाई व्हाई व्हाई के कमरिया। And here comes another depressing gana. Kamariya hilale, kamar bache to hilaye na bhai. It's Renuka and Antra, yes, on Radio Masti 24/7. तो अंतरा क्या कहना चाहती हो कमरिया के बारे में?
1: मैं इस मोर्चे में मैं आपके साथ हूँ, बिकॉज़ कमरिया तो मेरे पास भी नहीं है, सो आई एम टोटली विद इट, इन सिंक विद यू ऑन दैट। इट शुड बी लाइक एटलीस्ट कमरा तो कर ही सकते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: हैव टू मेक अ सॉन्ग लाइक दैट।
0: हाँ, कमरिया, तो जिसके पास कमरिया नहीं है वो क्या हिलाए, आपको इस बात का जवाब देना है आज के दिन में रेडियो मस्ती पर। इट्स ओके, जस्ट लेट दोज थॉट्स गो लूज। ये बताइए कमरिया हिला ले हिला ले, नहीं है अगर कमरिया तो क्या हिलाएं? 9151896 3। अंतरा सोच रही ऑलरेडी, उसके दिमाग में चार पांच आंसर्स आ चुके हैं, तो हम आपके आंसर्स का भी इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर। शुक्र है कि हमने सुबह सुबह 7 बजे ऐसी बातें कर ली, क्योंकि अगर हम ये 8-9 बजे करते ना तो काफी सारे मैसेजेस आ जाते हैं। फिलहाल के लिए आप सब थोड़े से कम भड़क रहे हो।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: जी बिल्कुल, मस्ती मैडनेस है। और अंतरा जी, आपकी खबर है, क्या कहना चाहेंगी आप?
2: जी भड़कना भाई, ओवर थिंकिंग नहीं करना होता है, जस्ट टेक इट एज इट इज। मतलब ठीक है, हम तो बोल के आते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा फन मोड में, हम मस्ती करने आए सुबह सुबह। फ्राइडे से, फ्राइडे वाले दिन हमसे ना सीरियसनेस की उम्मीद तो मत ही करना,
0: बिल्कुल नहीं।
2: वही सोच के ट्यून करना मस्ती बैटर्स पर। और ओवर थिंकिंग इसलिए भी नहीं क्योंकि हर बात पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती है, जो कि यूजुअली हम नॉर्मल इंसान बहुत ज्यादा करते हैं। इतनी ओवर थिंकिंग की नहीं नहीं ऐसा ऐसा था, ऐसा तो कुछ बंदे के साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है। चाइनीज पेरेंट्स, ठीक है। अब बच्चा पैदा हुआ, जो इनकी बेटी हुई, ब्लॉन्ड विद ब्लू आईज।
0: ओह ओके,
2: हाँ जी। तो वही ओवर थिंकिंग की जो गाड़ी है वो इतनी ज्यादा जल्दी चली और पति पत्नी की तरफ देखा, पत्नी एंड एवरीबॉडी लाइक क्या चल रहा है भाई, ये नीली आंखें कहां से आ रही हैं, ये बाल कहां से आ रहे हैं, व्हाट इज दिस, लाइक व्हाट इज करते हुए जब फाइनली डीएनए टेस्ट कैरी आउट किया गया, विच इज ऑब्वियस, दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप कि भाई करा लो, पता चल जाएगा सारा, अगर तुम चीटिंग कर रही हो तो कौन है इसका, तो ये सारी चीजें लेके ये आगे बढ़ ही रहा था। तो इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द फादर हैड अ रशियन ग्रेट ग्रैंडफादर, एंड ये इसी की बेटी है, बट वो उधर से इधर आ रहा है।
0: एग्जैक्टली, तो आप देखो ना, राहा जो है, आलिया और रणबीर की जो बेटी है, शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक राज कपूर जी।

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffle City. Limited seats, book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मौका जब हाथ से निकल जाए, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, रह जाते हैं तो सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं। अंतरा जी, सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं।
5: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: बाप रे, जब जब ये डीप बातों के साथ शुरू करती है ना, तो मतलब मुझे लगने लगता है भाई क्या हो गया है। अभी तो मैंने कहा था कोई सीरियस बातें नहीं करेंगे हम दोनों।
4: मैं पिछले साल स्पेन में ऐसे ही ढूंढा जा रहा था, बहुत सारे ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा था, और शायद मैं और तू भी काम आई जाते, पता नहीं। तो ऐसा है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो एंजॉय करते हैं ग्लास ऑफ वाइन विद डिनर, एंड आई ऑलवेज होप्ड कि भाई ऐसा होना चाहिए जिंदगी कि मेरे को कोई ज़बरदस्ती बोले कि नहीं तुम वाइन पिए बिना नहीं जा सकते, तो फिर ये वाली खबर आपके लिए है। हुआ कुछ ऐसा कि एक स्पेन में 10,000 लोगों को ढूंढा जा रहा था, वॉलंटियर्स को, जो कि 50 से 70 के बीच में हो, यंग भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो भी स्पेन में रहते हो, रहना चाहते हो, और साथ में ड्रिंक करें एटलीस्ट 3 अल्कोहलिक बेवरेजेस अ वीक, वाइन बियर और स्पिरिट्स, एंड दे आर इन गुड हेल्थ टू सेफली कंज्यूम अल्कोहल। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये वो ऑल दोस थिंग्स। सो भाई ऐसा है कि देवर लुकिंग कि भाई देवर ऑब्वियसली डूइंग दिस रिसर्च राइट, और जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे वो ऐसी बॉडीज ढूंढ रहे थे। अब मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सर्च है ये पिछले साल खत्म हो गई और हम तक पहुँच भी नहीं पाई।
6: मुझे ऐसा लग ही रहा था कि इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी होगी नहीं कि अभी ये चल ही रहा होगा।
4: भाई कह भी सकते थे, तुम छुट्टी भी अप्लाई कर सकते हो अपने ऑफिस में कि आई एम अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड दिस रिसर्च इज दुनिया को हेल्प करने के लिए, जनहित में जारी है, तो इसीलिए प्लीज अभी डिस्टर्ब ना करें, मैं सिर्फ कम्युनिटी के लिए बनाऊं, ऐसा कह के बहुत लोग पहुंचे भी, लेकिन या हम रह गए।
6: रेणुका ने ना ऐसा रैप्टा देना था ना मेरे को इस लीव एप्लीकेशन के बाद कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान एक बार में मेरे को वापस आ जाता कि सुन रियलिटी में वापस आ जा।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट।

नंबर टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20, पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।

0: क्योंकि आज रेणुका ने शुरू किया ही ये कि गोरिया और ये सारी चीजों के साथ, सच्ची में आप लेबल मत करो, लेबल इज नथिंग।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: मैं इंसान को किसी भी कैटेगरी में डालना गंदी बात है, या तो कोई बुरा इंसान हो उसको तुम की कैटेगरी में डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे गोरा काला नहीं यार, बॉडी नहीं यार, शेमिंग नहीं यार, है भाई, क्या ख्याल है?
0: जी जी बिल्कुल, मस्ती मैडनेस फ्राइडे वाला दिन और मैं हूँ अंतरा, साथ में है रेणुका। और मैं भी यही कह रही हूँ कि लेबल्स जो है वो ये डिफाइन नहीं करते हैं कि बंदा कितना केपेबल है किसी भी चीज के लिए। तो ये हमारी एक रिटायर्ड पोर्न स्टार हैं, ठीक है, जस्ट उन्होंने फन के लिए, जस्ट टू प्रूव इट टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो क्या होता है ना कि वो एक स्टीरियोटाइप होता है, जैसे ही किसी ने सुना कि पोर्न स्टार तो बस वहां पे दिमाग चला, इनको और तो आता ही क्या होगा, इन्होंने जिंदगी में और देखा ही क्या, मतलब ओके। तो वेल इन्होंने टेक्सास का बार एग्जाम विच इज नोन टू बी वन ऑफ द टफेस्ट लीगल, डोंट गो देयर, लाइक आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कंट्रोल माय सेल्फ, डू नॉट ड्रैग मी देयर, स्टॉप लाफिंग।
2: इतना कहना चाह रहा हूं, तुमने कहा इन्होंने जिंदगी में देखा ही क्या, उन्होंने ही तो देखा है जिंदगी में, काफी कुछ देखा है भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो। ऐसे ही गाना भी ऐसे आ गया। हाँ तो अंतरा पोर्न स्टार आगे,
0: मैंने कितना मुश्किल से उधर से डाइवर्ट किया था, ये ना मेरे को खींच के ड्रैग करते हुए लेके गई वहां पे। बट एनीवेज ये रिटायर्ड पोर्न स्टार जो है टेक्सास बार एग्जाम जो है उन्होंने काफी सालों की प्रिपरेशन के बाद इतना टफ एग्जाम जो है बिल्कुल पास कर दिया, नॉट बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी अ लॉयर, it was just because she wanted to prove a lot of people a lot of thing ki bhai aisa nahi hai ki hum bewakoof yahan pe baithe hue hain, theek hai, hamare paas bhi dimag hai, dekh lo itna tough exam humne bhi baithe baithe pass kar liya, I could pass the bar, okay, to fir tum na apne labels apne paas rakho, so that was just she wanted to prove that,
2: and I think it's great because people are multi talented, multi faceted, jahan ek taraf aap porn star ho sakte ho aur dusri taraf aap lawyer kyun nahi ho sakte, bilkul ho sakte ho, ye kya baat hai, matlab राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन सब काम कर सकती है, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब कर सकता है। गाना सुनते हैं आज की रात, ओके।
3: रेडियो मस्ती 24/7, डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: अब भाई ऐसा है कि जिंदगी में जब शादियां होती हैं, शादी में बड़े सारे इंसिडेंट्स होते हैं, सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उनके इमीडिएट माँ बाप ही नहीं बट और रिश्तेदार भी होते हैं, और कभी कभी उन रिश्तेदारों की वजह से वो रिश्ता बनते बनते रह जाता है, अंतरा रह जाता है।
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस इकोनॉमिकल, बट अगर यू नो कलेशी रिश्तेदार आर समटाइम्स रियल फन इन द होल कॉन्वर्सेशन,
0: क्योंकि आज के दिन में हम उस कैटेगरी में आ चुके हैं इसलिए हमें बहुत मजे आने लग गए हैं। बट यू नो व्हाट, एक बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन हुई उत्तर प्रदेश इंडिया में हाल ही में। तो जब प्री वेडिंग रिचुअल्स चल रहे थे, ठीक है, शादी से दो दिन पहले एग्जैक्टली, तो अराउंड सुबह के 4 बजे जो ब्राइड का कुत्ता था वो जोर जोर से भौंकने लग गया। जब वो कुत्ता जोर जोर से भौंका तो जो एक रिश्तेदार था ग्रूम का, ठीक है, उसने उस कुत्ते को 2 चपेटे लगा दिए, उसको 2 थप्पड़ मार दिए और बोला निकल जाए यहाँ से, और मतलब थोड़ा सा असॉल्ट कर दिया कुत्ते को। अब उसमें क्या हुआ, एक आर्ग्यूमेंट सी हो गई और वो जो दुल्हन है उसने कहा मुझे नहीं करनी शादी, ठीक है, कैंसिल करो सब कुछ। अब उसके बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर चली गई, जो फाइनल शादी वादी होनी थी वो नहीं हुई। फिर क्या हुआ, 5 दिन के बाद में ये जो लड़की है ये अपना माँ बाप का घर छोड़ के पति के घर पहुंच जाती है अकेले, और उसको जाके कहती है कि भाई शादी तो हमारी लीगली एक्चुअली 1 महीने पहले एक आर्य समाज मंदिर में हो चुकी थी, बाकी के रिचुअल्स तो बाद में हो रहे थे, सो एक्चुअली तो हमारी शादी हो चुकी है, तो हाउ कैन आई से कि मेरे को अब तेरे साथ नहीं रहना, तो मैं आ गई हूँ। और वो रिकॉन्सिलिएशन करते करते उसने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया टू कन्फर्म कि भैया हम अब साथ में रह रहे हैं ओनली बिकॉज हमारी पहले आर्य समाज में शादी हो चुकी है। उसके बाद खुशी खुशी आगे बढ़ गए, पुलिस वुलिस को भी हटा दिया, सब कुछ कर दिया। तो उस कुत्ते की कहानी की वजह से जो ये सब हुआ था उसके बाद सब ठीक हो गया। मतलब ऐसे भी होता है,
1: if only you all could see my face, I was still waiting a turn in the story which I couldn't get and I was like अभी ये कुछ बोलेगी, अभी अभी कुछ कुछ तो होगा क्या कुत्ता जो है,
0: कुत्ते के पीछे लड़ाई कर ली, शादी नहीं करी, लोग अपने घर चले गए, थोड़ी देर में आ गई कहती है मैं हम तो शादीशुदा, क्या मतलब कुत्ते की पिटाई का क्या हुआ, कुत्ते के जस्टिस के लिए कौन लड़ेगा आगे, कोई नहीं, राइट, भूल गए ना।
1: मैं तो कितनी आई वॉज प्राउड ऑफ हर कि उसने मतलब ऐसा कदम उठाया कि भाई कोई भी करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है।
0: पर अब पता क्या, वो अंदर घर में रह के अब वो उस रिश्तेदार को वही 2 थप्पड़ लगाएगी जो उसने उसके कुत्ते को लगाया था। यू वेट एंड वॉच, ये सीक्वल आएगा,
1: दैट इज आल्सो
0: बेटर, बदला।
1: हम है कलेशी बुआ है दोनों यहाँ बैठी हुई, नहीं भी होगा तो करा देंगे।
2: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: भाई अगले घंटे में यानी कि आवर नंबर टू पे वेलकम करते हुए हम दोनों यानी कि रेणुका एंड अंतरा मस्ती मैडनेस फ्राइडे वाली सुबह हेलो हेलो
1: दुनिया क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: मस्ती मैडनेस को पता नहीं कितने साल हो गए हैं, एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट 9 years सिंस वी बीन, ओ माय गॉड 9 साल। ये शो को मुबारक हो, मुबारक हो।
3: हाँ
2: भाई क्या बात है, गंदी बातें हुई हैं, मुबारक हो। हाँ तो अंतरा जी बताइए क्या खबर है आपकी इस घंटे की पहली पहली।
0: खबर कुछ ऐसी है कि जब अगर कोई इंसान ना कभी कभी ऑनेस्टली आपको कोई चीज कह रहा हो तो उसको मान लेना चाहिए। उस टाइम पे ना ये अपनी पुलिस गिरी और ये सारी चीजें ना कभी कभी थोड़ी सी साइड में रख के ना थोड़ा सा एक रैशनल इंसान बन के सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, फील आती है। एक फ्लोरिडा का बंदा, ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ओवर स्पीडिंग कर रहा था तो पुलिस वालों ने आया इधर तो पूछा कि क्या चल रहा है, ओवर स्पीडिंग, अब तो तुम्हारी टिकट कटेगी और तुमको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। अब वो समझा रहा है कि भाई मे को करनी है सुसु और पॉटी, आई है जबरदस्त जोर से, ठीक है, मे को जाने दो, मैं इसीलिए ओवर स्पीड कर रहा था बिकॉज मुझे रुक नहीं रहा है,
2: ओके,
0: ठीक है, रोका नहीं जा रहा, आई need to just do whatever I want to do so that you know sab theek rahe, but nahi police wale to police wale unhone apne patrol car mein usko matlab dal diya aur le chale. ab marta kya na karta, usne kaha ki theek hai bhai main to bol hi raha tha, then अब बेचारा उससे तो कंट्रोल हुआ नहीं तो उनकी ही कार में बैठकर उसका सुसु भी हो गया, पॉटी भी हो गया, दोनों का दोनों हो गया। एंड देन उसके बाद भी मतलब बेचारे की किस्मत, उसके बाद मल्टीपल ऑफेंसेस के और टिकटें लगा दी गई उस बेचारे के ऊपर,
2: बीइंग
0: एंड रेजिस्टिंग एंड उसके बाद और भी 4-5 चीजें कि नहीं ऐसा नहीं होना। भाई वो करता क्या, वो तो बता ही रहा है।
2: हाँ, नेचर्स कॉल, नेचर्स कॉल। भाई धुरंधर भी नहीं रोक सकता अपनी सुसुपाटी अगर आई होती है तो। हाँ ये तो एक आम आदमी था, हद हो गई यार, मतलब पहले ये सब पुलिस की गलती है मेरे हिसाब से, ये सब पुलिस की गलती है, किसी और की।
0: बट लेकिन करे भी क्या, मतलब अगर जस्ट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो अगला बंदा करे भी क्या, अगर आई है तो कैसे ही कर सकते हैं।
2: पिछले शो पे मैंने बताया था ना गाड़ी के अंदर जो टॉयलेट सीट्स आ गई हैं अब चाइना में वो लगी होनी चाहिए, आई थिंक दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। कोई नहीं, आप पिछला शो सुन लेना किसी टाइम, अब कहाँ सुनेंगे वैसे भी।
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from